فَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ

0: सकरण की हो तो आवाज भी सकरण की है।
1: सुनते रहो GFM 90.8।
2: मिश्र मोहम्मद आयो

0: Merhaba Rabbi, Rabbi.
1: सिंध के माथे का झूमर
2: DFM 88 नेटवर्क
1: सिंध की आवाज

हैदराबाद जी अदालत में वकीलन जे गोड़ बाद मारिया सारियों के हथकड़ी लगाई हुई। पुलिस ख्वाजा सरावन के हथकड़ी लगाई पर मारिया सारियों के हथकड़ी बिना अदालत में पेश कयो। अदालती अहाते में वकीलन जे गोड़ बाद पुलिस पारां मारिया सारियों के हथकड़ी लगाई हुई।

गंबर जे म्युनिसिपल चेयरमैन पारां पीपल्स पार्टी जे एमएनएस जावेद शाह ऐं संदसि ज़ाल बेरिन भुट्टो ते करप्शन जा इल्ज़ाम। म्युनिसिपल चेयरमैन अब्दुल लतीफ़ शेख पारां एमएनएस ते इल्ज़ाम लॻाइण वारी मुबैना ऑडियो साम्हूं अची वई। ऑडियो क्लिप में म्युनिसिपल चेयरमैन चवे थो त जावेद शाह ऐं डॉक्टर बेरिन भुट्टो 20 माण्हुनि खे कचे मुलाज़िम तौरु भर्ती करण लाइ चयो। मूं जावेद शाह ऐं डॉक्टर बेरिन भुट्टो खे जवाबु ॾेई छॾियो। बेरिन भुट्टो चयो त माण्हू भर्ती कयो, तेल बि ॾियो ऐं पैसा बि ॾियो। इनकार करण ते ॿई ज़ाल मुड़ुस एम एन एस मूं ते कावड़ियल आहिनि। एम एन एस ऐं साफ़िनि खे पैसा ॾींदासीं त कमु कीअं हलंदो? ज़िले चेयरमैन खे व्हाट्सएप ते वॉइस मैसेज कंदे म्युनिसिपल चेयरमैन चयो त एम पी नईम खरल कॾहिं बि न पैसा घुरिया आहिनि, नई वरी तेल घुरियो आहे। ऐं पीपल्स पार्टी जे एम एन ए जावेद शाह जिलानी पारां करप्शन जा इल्ज़ाम हणंदड़ म्युनिसिपल चेयरमैन गंबट खे 10 करोड़ हर्जाइण जो नोटिस सुम्हण जो ऐलान। टाइम न्यूज़ जे प्रोग्राम टॉप स्टोरी में ॻाल्हाईंदे जावेद शाह जिलानी चयो त म्युनिसिपल चेयरमैन अब्दुल लतीफ़ शेख मूं ते ऐं मुंहिंजी घरवारी एम एन ए मेरिन भुट्टो ते करप्शन जा कूड़ा इल्ज़ाम आया आहिनि। अब्दुल लतीफ़ शेख कुझु अर्सो अॻु किनाल ख़िलाफ़ु एहतजाज दौरान कुझु वधीक ॻाल्हायो वियो हो, संदसि ख़िलाफ़ु शिकायत कई हुई, तंहिं करे कूड़ा इल्ज़ाम हणी रहियो आहे। म्युनिसिपल चेयरमैन गंबट असांजी किरदारु कुर्सी कई आहे, संदसि ख़िलाफ़ु भरपूर कानूनी कार्रवाई कंदासीं।

Okay.

0: It's 10 a.m. This time check is brought to you by
1: Al Habib Current Plus Account. Bharosa bhi, raftar bhi. Bank Al Habib. Rishta bharose ka.
2: Ab aap sunenge GAFM Network par KTN News.
3: अणी तरमीम जो सब का वो फायदो पंजाब के थो जो एनएफसी अणी तरमीम के तहफुज देने तैयार ना तो आवाम के कड़ो आइनी हक या माली वसीला दींदा वो तो पंजाब के हकन से सौदो कर तैयार है वे गिलगित बुल्तिस्तान के भी खपा छींदा पीपी चेयरमैन जो गजर में चूंडर जलसे के खिताब बिलाल भुट्टो जरदारी है तो पंजाब सब का घट तरीन अघ से बिजली सिंध के थरकुल मनसूबे में वो है कराची के सब का घट अघ से बिजली नूरियाबाद पावर प्लांट में मिली है असा के वफाक में का भी मदद न घुर्जे उदा तधिक मामला खराब कंदा गिलगित में मैंडेट घुर्जे जी इस्लामाबाद वही चई सूँ तो बो सूबो ठाण लाए अग गिलगित जो आवाज़ बुधनो पव गिलगित बुल्तिस्तान के मिल्कियत जो हक दियण लाए जालो वो वजीर घुर्जे नवाजदीग अगवण ख्वाजा सदर रफीक जहाँ इतिहादन मुखालिफन से वार गिलगित में चूंड जलसे के खिताब दौरान ख्वाजा सदर रफीक डफेड़ पकड़ींदड़ रियासती इदारन से हमला कंदड़ या जमहूरियत जो वेस ओडे वन छरन के खंडन बणाईंदड़ आवाम जो मसला हल ना कर सकन तसुब की गाल ना है कम की भेट करो तड़े सुने शहर के कराची जी खंडर ढसण घुरो था या गिलगित के लाहौर ए पंजाब जड़ी तरक्की दियणी है फैसलो आवाम के हथ में है गिलगित बुल्तिस्तान के आइनी हक दियण लाए समूरन रियासती इदारन के गड़जी फैसलो करो पवो पीटीआई के एडो न दबाए जो सिस्टम का बाहर निकलने से मजबूर थी वे पीटीआई चेयरमैन जी गिलगित में कर्नर गडजानी के खिताब दौरान धमकी बैरिस्टर गौर चाहता है वो सोचने से मजबूर न करो तो असो सिस्टम में रहने जो कड़ो फायदो कोई अस असेंबली सेनेट में भी बाहर निकलने से मजबूर थी पीटीआई के चूंड मुहिम की इजाजत न दियण चूंडन का अगु धांधुली है लीडर्स एमएनएस के रोकणी आ सूबे बदर करण न रुगो आइन के खिलाफ है पर जमहूरियत खिलाफ साजिश है जेके पांजा तक हराए पाया वे गिलगित बुल्तिस्तान के मानून का वोट घुरण आया उन्होंने चैन साल की कारकर्दगी वो है तो पीटीआई के रोको तो जी चूंडू खटे वन दुश्मन जंग के मैदान में शिकस्त खाण बाद ईरान अंदर नफरत ए विरहांग जा बिज पोखे रो है दुश्मन के ईरान हथा शिकस्त मिली चुकी है हाँ हू जिलत भोगे रो है ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनई जो तहरीरी बयान जारी मुश्तबा खामनई दुश्मन हाँ पाँच ध्यान हाइबर जंग से डेई रो है उन दुश्मन चक बेतमादी ए मायूसी पखणवारो हथियार इस्तेमाल कर रो है अमरीका की क्यादत में साम्राज्य गुजरल 80 साल का इसराइल नाले एक अडो कायम किया है एक आजाद ए मजबूत ईरान जो वजूद उन्होंने हजम न पो थे ईरानी आवाम के नए हाइबर जंग दौरान भी कौमीता जो मुजाहरों करो पव हलंदड़ हफ्ते की आखिर तई ईरान से मादो थन जमकान ईरान से गाल बेहतर अंदाज में हली रही है मादे से सयू कर वेझो पची वह अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो व्हाइट हाउस में साफ इन से गाल डोनाल्ड ट्रंप बमबारी का हरमोज की नाकाबंदी असरायती है ईरान से मादो थी वो तो हरमोज लंग भी खुली वो कोवैत ईरानी हमले बाबत सवाल जो जवाब दींदे डोनाल्ड ट्रंप कोवैत हमले का अग अमरीकी फौज ईरान के शदीद हमले जो निशानो बणाय हो उन कर ही चई सकजे तो ईरानी उन हमले जो जवाब दे रहा हुआ असांजी अस्करी ताकत जंग का अग जी भेट में वधिक मजबूत थी वही है जंग दौरान भी ईरान हथियारन जी पैदावार बरकरार रखी असा वटे जंग जारी रखने जी सलाह मौजूद है पर उन जो मतलब वो ना है तो अस जंग चाहूँ था ईरानी परदेही वजीर अब्बास इराकची जो बयान अब्बास इराकची चयो त अमरीका सा राबत ना गालन जो सिलसिलो मोतल न थियो आहे अमरीकी तजवीजों से बदल ताजे मसौदे जो जायजो वठी रहियूं गालन में अञा ताईं का खास अघ भराई न थी सघी आहे अमरीकी एवान नुमाइंदगान सदर ट्रंप जा अख़्तियार महदूद करण वरी करारदाद मंजूर करे वरती। डेमोक्रेट्स पारां पेश कयल करारदाद जी हिमायत में 215 ऐं मुखालफ़त में 208 वोट पिया। हुकुमरान रिपब्लिकन जमायत जे 4 मेंबर्स बे ठारा जी हिमायत में वोट ॾिनो। करारदाद मूजिबि ईरान ख़िलाफ़ फ़ौजी कार्रवाई लाइ सदर खे हाणे कांग्रेस खां इजाज़त वठणी पवंदी। पिनकी जा सहूलतकार लाहौर मां गिरफ़्तार थिया आहिनि। NNF ॿुधायो आहे त उन्हनि में नाइजीरियन शहरी बि शामिल आहिनि। सिंध में पिनकी जे साथारनि खे सोगो करण लाइ कमु करे रहिया आहियूं, सभु कुझु तव्हांजे साम्हूं अची वेंदो। सिंध जे घर वज़ीर ज़ियालन जार चयो आहे त मंशा जे वापे ऐं कारोबार जे ख़ात्मे लाइ सिंध में 14 एंटी नार्कोटैक्स कोर्ट्स क़ाइमु करे रहिया आहियूं। सेक्शन 28 में तरमीम करे असां सिंध पुलिस खे बि नार्कोटैक्स डिपार्टमेंट वारा अख़्तियार ॾेई रहिया आहियूं। सिंध असेंबली जे घरू मामलनि बाबति स्टैंडिंग कमेटी जे इजलास बाद ज़ियालन जार चयो त मीडिया पिंकी केस खे एॾी हाइप ॾिनी आहे जो समूरा पार्लियामानी मेंबर उन बाबति सवाल करे रहिया हुआ। इजलास में रुगो पिंकी जे केस न पर मंशा जे ख़ात्मे ऐं ॿियनि मामलनि ते बि ख़्यालनि जी ॾे वठि कई वई। हिकु सवाल ते घरू वज़ीर चयो त सिंध में नैब खे किथे करप्शन नज़र अचे थी त उहा भली कार्रवाई करे, नैब खे कार्रवाइनि जो अख़्तियार आहे। सिंधी घरू खाते जी स्टैंडिंग कमेटी जे इजलास में MPAs ऐं MNS जा IG सिंध खां सख़्तु सवाल जवाब। फिरालटालपुर जी सदारत हेठि इजलास में IG सिंध जी मंशात स्कैंडल में गिरफ़्तार मुल्क पिंकी जे केस बाबति ब्रीफिंग। IG सिंध चयो त पिंकी जे नेटवर्क में शामिल समूरा जवाबदार गिरफ़्तार कया विया आहिनि, वधीक जांच जारी आहे। फिरालटालपुर चयो त पिंकी केस में सहार हसन ज़मानत ते आज़ादु आहे, कीअं था चयो त सभु जवाबदार गिरफ़्तार आहिनि। MNA कादर पटेल चयो त ॿिनि वॾनि घरनि जा ॿ फर्द फोत थिया त मंशात फिरोशन ख़िलाफ़ वठ पकड़ शुरू थी वई। फिरालटालपुर जवाबु ॾींदे चयो त तव्हां अॼु इजलास में आया आहियो, मंशात ख़िलाफ़ असांजा 2024 खां इजलास जारी आहिनि। कादर पटेल चयो त समूरी पुलिस गुटके मावा ख़िलाफ़ कार्रवाई में लॻी पई आहे, आइस ऐं कुकिन सरियाम विकिरो थी रही आहे। जमायत इस्लाम जे फारूक अहमद चयो त पिंकी खां मंशात ख़रीद कंदड़नि जा नाला ॿुधायो। घरू वज़ीर ज़ियालन जार चयो त असां नाला खणणु नथा चाहियूं, जांच मुकमल थियण ते इन कैमरा ब्रीफिंग ॾींदासीं। खैरपुर जी वापरा कॉलोनी में नौजवान जोड़े ज़हर पी छॾियो। नारी खालदा चांडियो सॾे ते फौत, नौजवान वही चांडियो गणती जोगी हालत में इस्पताल मुंतकिल। वारसनि वाक़ियो घरू अणबण जो नतीजो करार ॾेई छॾियो। पुलिस मूजिबि वाक़िए जी मुख़्तलिफ़ रुखनि खां जांच कई पई वञे। फुलबर सां रोहिड़ी केनाल पाल रेगुलेटरी वटि ॿुॾी वियल ॿिनि नौजवाननि जा लाश। ॿई नौजवान मोटरसाइकिल सूधो किनाल में किरी पिया हुआ। सरकारी टोबनि ऐं ॻोठाणनि गॾियल कोशिशुनि सां लाश कढिया। पोतनि में मेहताब ऐं गुलाम अली वगण शामिल। हैदराबाद जी अदालत SSP ऑफिस में भंज डाज इल्ज़ाम हेठि गिरफ़्तार मारिया सारियो ऐं 15 ख़्वाजा सरान खे जुडिशियल रिमांड ते जेलू माणे छॾियो। कंज्यूमर कोर्ट जे जज मोहम्मद आमिर राजपूत जी अदालत मां मारिया सारियो ऐं ॿियनि खे 14 ॾींहनि जे जुडिशियल रिमांड ते जेलू माणियो वियो। अदालत पारां ट्रांसजेंडर्स खे जेल जे धार सेल में रखण ऐं मारिया सारियो खे औरतुनि वारे सेल में रखण जो हुकुम। SSP ऑफिस जे जूनियर क्लर्क मारिया सारियो ऐं ख़्वाजा सरान ख़िलाफ़ कैंट थाणे ते भंज डाज जो केस दाख़िल थियल। FIR में चयो वियो आहे त मारिया सारियो जी अॻुवाणी में ख़्वाजा सरा डंडा खणी SSP ऑफिस में दाख़िल थिया ऐं भंज डाह कई। ख़्वाजा सरान सब इंस्पेक्टर बेनज़ीर ज़रदारी जी ऑफिस में दाख़िल थी केस धिका ॾेई कढी छॾियो। सब इंस्पेक्टर जी कुर्सी ते मारिया सारियो खे वेहारियो वियो।

हैदराबाद जी अदालत में वकीलन जे गोड़ बाद मारिया सारियों के हथकड़ी लगाई हुई। पुलिस ख्वाजा सरावन के हथकड़ी लगाई पर मारिया सारियों के हथकड़ी बिना अदालत में पेश कयो। अदालती अहाते में वकीलन जे गोड़ बाद पुलिस पारां मारिया सारियों के हथकड़ी लगाई हुई।

गंबड़ म्युनिसिपल चेयरमैन पारां पीपल्स पार्टी के एमएनएस जावेद शाह ऐं संदसि ज़ाल बहरीन भुट्टो ते करप्शन जा इल्ज़ाम। म्युनिसिपल चेयरमैन अब्दुल लतीफ शेख पारां एमएनएस ते इल्ज़ाम लॻाइण वारी मुबैना ऑडियो साम्हूं अची वई। ऑडियो क्लिप में म्युनिसिपल चेयरमैन चवे थो त जावेद शाह ऐं डॉक्टर बहरीन भुट्टो 20 माण्हुनि खे कचे मुलाज़िम तौरु भर्ती करण लाइ चयो। मूं जावेद शाह ऐं डॉक्टर बहरीन भुट्टो खे जवाबु ॾेई छॾियो। बहरीन भुट्टो चयो त माण्हू भर्ती कयो, तेल बि ॾियो ऐं पैसा बि ॾियो। इनकार करण ते ॿई ज़ाल मुड़ुस एमएनएस मूं ते कावड़ियल आहिनि। एमएनएस ऐं साफ़िन खे पैसा ॾींदासीं त कमु कीअं हलंदो? ज़िले चेयरमैन खे व्हाट्सएप ते वॉइस मैसेज कंदे म्युनिसिपल चेयरमैन चयो त एमपी नईम खरल कॾहिं बि न पैसा घुरिया आहिनि, न ई वरी तेल घुरियो आहे। ऐं पीपल्स पार्टी जे एमएनए जावेद शाह जिलानी पारां करप्शन जा इल्ज़ाम हणंदड़ म्युनिसिपल चेयरमैन गंबट खे 10 करोड़ हर्जाइण जो नोटिस सुम्हाइण जो ऐलान। टाइम न्यूज़ जे प्रोग्राम टॉप स्टोरी में ॻाल्हाईंदे जावेद शाह जिलानी चयो त म्युनिसिपल चेयरमैन अब्दुल लतीफ शेख मूं ते ऐं मुंहिंजी घरवारी एमएनए मेरिन भुट्टो ते करप्शन जा कूड़ा इल्ज़ाम आया आहिनि। अब्दुल लतीफ शेख कुझु अरसो अॻु किनाल ख़िलाफ़ु एहतिजाज दौरान कुझु वधीक ॻाल्हाए वियो हो, संदसि ख़िलाफ़ु शिकायत कई हुई, तंहिं करे कूड़ा इल्ज़ाम हणी रहियो आहे। म्युनिसिपल चेयरमैन गंबट असांजी किरदारु कुर्सी कई आहे, संदसि ख़िलाफ़ु भरपूर कानूनी कारवाई कंदासीं।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: रेस्टोरेंट बिजनेस में हर सेकंड मैटर करता है, कस्टमर्स क्वालिटी के साथ डिस्काउंट्स भी चाहते हैं। बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए, इसीलिए मेरे पास है बैंक अल हबीब का अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, जिसमें मिले फ्री चेकबुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अल हबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट्स फैसिलिटी, ATMs एंड कैश डिपॉजिट मशीन्स की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क, अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी रफ्तार भी, बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
2: हैरत अंगेज जदीद मशीन जरिए पंहिंजो चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक तरीक़े इलाज सां शिफ़ा हासिल करियो। जी हाँ, हाणे अवां जे पंहिंजे शहर सकरण में हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक ते मशहूरु मारूफ़ ख़ानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब, DHMS सिंध, RHMP पाकिस्तान, जनरल फिजिशियन, माहिर अमराज मैदो ऐं जिगर जी गर्माइश, गुर्दे जी पथरी ऐं सोज, पुराणी खंघ, ज़ुकाम, दिलि जी तकलीफ़, अधु मथे जो सूर, अखियुनि जी ख़ारिश, जोड़नि जो सूर, बुखार, ॿारनि जो देर सां हलण, फालिज, शुगर, दिमाग़ी कमज़ोरी, ख़ारिश, नासूर, खूनी ऐं बादी बवासीर, इन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वेंदो आहे। होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब, टाइम रोज़ानो सुबुह 9 वॻे खां शाम 6 वॻे ताईं, बरोज जुमो 12 वॻे ताईं। एड्रेस: हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक, स्टेशन रोड, सकरण। वधीक मशवरे ऐं राब्ते जे लाइ 0327-99-84-703।
1: हर चप्पा हर गोशा
3: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
1: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: It's 10:15 a.m. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
2: माल तैयार है, ट्रक खड़ा है, मजदूर खड़े हैं, बस एक चीज का इंतजार है, पेमेंट। कारोबार चलाने के लिए सिर्फ सामान नहीं, रिलायबल बैंकिंग भी चाहिए होती है। बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए। इसलिए मेरे पास है बैंक अलहबीब का अलहबीब करंट पर्स अकाउंट, जिसमें मिले फ्री चेक बुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अलहबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट फैसिलिटी, ATM और कैश डिपॉजिट मशीन की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क, अलहबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी, रफ्तार भी। बैंक अलहबीब, रिश्ता भरोसे का।
3: हर पहर जिंदगी की लहर, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ए जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवां जी स्किन के बनाए निखरी ए चमकदार सिर्फ बिन डीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म ए दिए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डी जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
1: शादी का इवेंट और स्टेज आधा तैयार क्यों क्योंकि वेंडर्स को चाहिए फौरी पेमेंट इवेंट प्लानिंग हो या कोई और बिजनेस पेमेंट रुक जाए तो काम भी रुक जाता है बिजनेस करना आसान नहीं लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए इसलिए मेरे पास है बैंक अलबीब का अलबीब करंट अकाउंट जिसमें मिले फ्री चेकबुक डेबिट कार्ड बैंकर्स चेक ई स्टेटमेंट ऑनलाइन बैंकिंग अलहबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट फैसिलिटी ATM और कैश डिपॉजिट मशीन की इजी एक्सेसिबिलिटी मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क अलहबीब करंट प्लस अकाउंट भरोसा भी रफ्तार भी बैंक अलहबीब रिश्ता भरोसे का
2: अंगेज जदीद मशीन जरिए पंहिंजो चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक तरीक़े इलाज सां शिफ़ा हासिल करियो जी हा हाणे अवां जे पंहिंजे शहर सकरनि में हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक ते मशहूरु मारूफ़ ख़ानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब DHMS सिंध RHMP पाकिस्तान जनरल फिज़िशियन माहिर अमराज मैदो ऐं जिगर जी गर्माइश गुर्दे जी पथरी ऐं सोज पुराणी खंघ ज़ुकाम दिल जी तकलीफ़ अधु मथे जो सूर अखियुनि जी ख़ारिश जोड़नि जो सूर बुखार ॿारनि जो देर सां हलणु फालिज शुगर दिमाग़ी कमज़ोरी ख़ारिश नासूर खूनी ऐं बादी बवासीर इन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वेंदो आहे होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब टाइम रोज़ानो सुबुह 9 AM खां शाम 6 AM ताईं परोस जुमो 12 AM ताईं एड्रेस हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक स्टेशन रोड सकर वधीक मशवरे ऐं राब्ते जे लाइ 0327-99-84-763
0: तो आवाज भी सिंध की है GFM 88 नेटवर्क GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज

0: It's 11 a.m. This time check is brought to you by
1: Al Habib Current Plus Account. Bharosa bhi, raftar bhi. Bank Al Habib. Rishta bharose ka.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: अरिड़ी तरमीम जो सभ का वो फायद पंजाब के थींदो जेकर हू NFC या अरिड़ी तरमीम के तहफुज देने लाइ तैयार ना हन त अवाम के कड़ो आइनी हक या माली वसीला दींदा। हू तो पंजाब के हकन से सौदो करण लाइ तैयार आन उ गिलगित बल्तिस्तान के भी खपाए छींदा। पीपी चेयरमैन जो गजर में चूंड जलसे के खिताब। लाल भुट्टो जरदारी चो तो पंजाब सभ का घट तरीन अग ते बिजली सिंध के थरकोल मनसूबे में वो है। कराची के सभ का घट अग ते बिजली नूरियाबाद पावर प्लांट में मिली है। असा के वफाक का का भी मदद न घुर्जे उदा तो मामला खराब कदा। गिलगित मां मैंडेट घुर्जे तो जी इस्लामाबाद वही सूँ तो बो सूबो ठाण का अग गिलगित जो आवाज़ बुधनो पव। गिलगित बल्तिस्तान के मिल्कियत जो हक जान लाए जियालो वो वजीर घुर्जे।

ऐं चुल में आपाशी अमलदारनि जी लापरवाही सबबि मूसा अलाहाबाद शाख ओवरटॉप पाणी रहीमाबाद कॉलोनी में दाख़िल। इलाइक़े वासी सरापा एहतजाज, रहवासियुनि जो चवणु आहे त आपाशी अमलदारनि जी लापरवाही सबबि शाख जा कपर खाॼी विया। वधीक पाणी छोड़ थियण सबबि ओवरटॉप ठही घरनि में दाख़िल थी वियो। इलाइक़े वासियुनि तर्फ़ां मशीनरी ज़रिए घरनि मां पाणी निकाल कराइण जो मुतालबो।

0: आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर। आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: जदीद मशीन जरिए पंहिंजो चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक तरीक़े इलाज सां शिफ़ा हासिल करियो। जी हाँ, हाणे अवां जे पंहिंजे शहर सकरन में हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक ते मशहूरु मारूफ़ ख़ानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब DHMS सिंध RHMP पाकिस्तान जनरल फिज़िशियन माहिर अमराज मैदो ऐं जिगर जी गर्माइश गुर्दे जी पथरी ऐं सोज पुराणी खंघ ज़ुकाम दिल जी तकलीफ़ अधु मथे जो सूर अखियुनि जी ख़ारिश जोड़नि जो सूर बुखार ॿारनि जो देर सां हलणु फालिज शुगर दिमाग़ी कमज़ोरी ख़ारिश नासूर खूनी ऐं बादी बवासीर इन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वेंदो आहे। होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब टाइम रोज़ानो सुबुह 9 वॻे खां शाम 6 वॻे ताईं बरोज़ जुमो 12 वॻे ताईं। एड्रेस हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक स्टेशन रोड सकर। वधीक मशवरे ऐं राब्ते जे लाइ 0327-99-84-763।
2: सकरण की हो तो आवाज भी सकरण की है।
3: सुनते रहो GFM 90.8।

पहिरीं ख़ानी ख़ूबसूरत आवाज़ ऐं वांजी सुंदर समातो त मुंहिंजे वेठा ताईं तव्हां असांजे प्रोग्राम में शामिल थी सघो था। बज़रिया SMS ऐं SMS करण जो तरीक़ेकार सवलो आहे, आसान आहे। पंहिंजे मोबाइल फ़ोन जे राइट मैसेज ऑप्शन में हलिया वञो, MRO लिखो, स्पेस पियो, स्पेस खां पोइ लिखो पंहिंजो नालो, पंहिंजे ॻोठ या शहर जो नालो ऐं लिखी करे मोकिलियो असां नहां 888 1 ते। हिन नंबर ते जीअं ई तव्हांजा मैसेज ईंदा त असां उनखे पंहिंजे प्रोग्राम जी सूंहं बि बणाए वठंदासीं। त प्रोग्राम म्यूज़िक मस्ती हर जुमे जे ॾींहुं 11 वॻे खां वठी 1 वॻे ताईं जीअं FM नेटवर्क तां ऑनियर कयो वेंदो आहे, जंहिंमें असां सां गॾु मिठा माण्हू हूंदा आहिनि, लाड़काणे जा, सखर जा, मीरपुर ख़ासि जा, मोरो जा, ऐं उनखां अलावा हूंदा आहिनि मेहरापुर, मटियारी, मातली ऐं सकरण जा। त सकरण जा दोस्त बि शामिल थींदा आहिनि असांजे प्रोग्राम में, अहिड़े तरीक़े सां मोरो वारा दोस्त बि असांजे प्रोग्राम में शामिल थींदा आहिनि। त कुझु दोस्तनि जा मैसेजिस बि आहिनि, उन्हनि जी तरफ़ बि हलंदासीं। उन खां पोइ तव्हांखे ॿुधाईंदासीं निगम दास जो ॾाढो ज़बरदस्त सॉन्ग आहे, जेको मुंहिंजो त पसंदीदा आहे, बल्कि अव्हां जो बि उहो पसंदीदा ई सॉन्ग हूंदो। त अहमद ख़ान खोसो पाण खे ॿुधी रहियो आहे मोरो शहर जे, शायदि अदा जन लिखियो आहे, हा ठीकु आहे, दादू रोड खां। ऐं अदा अहमद ख़ान पहिरियों दफ़ो असांजे प्रोग्राम में शामिलु थियो आहे, महिरबानी अदा अहमद, तव्हां असांजे प्रोग्राम में शामिलु थिया आहियो, लख कुर्ब लख अहसान अव्हां जा। तव्हां असांजो शो ॿुधी रहियो ऐं शो खे पसंदि करे रहियो, अदा जन फरमाइश कयो त असांखे मुमताज़ मौलाई जी आवाज़ में को सॉन्ग ॿुधायो त हाज़िर मुंहिंजा मिठा अथई। ॻोठु ॿाड़ो खान लाशारीअ खां ग़ुलाम नबी लाशारी पंहिंजे प्रोग्राम ॿुधे पियो, हुन सां गॾु मोहम्मद आचार लाशारी आहे, ऐं उहो चवे थो अस्सलामु अलैकुम अदा गुलाब। त वालेकुम अस्सलाम हुजा साईं, कहिड़ा हाल नवां जा, ठीकु आहियो त भई सही आहे अव्हां जी, ऐं अदा जन दुआ करे रहिया आहिनि। ऐं उन सां गॾु आहे हाजी नकी ज़रदारीअ खे बि सलाम चई रहिया आहिनि, ऐं चवनि पिया त जेके असांजा लिसनर्स आहिनि उन सभिनी खे सलाम छॾिजो। ऐं मुमताज़ लाशारी जे आवाज़ में फरमाइश कई अथनि त हाज़िर प्यारा मुमताज़ लाशारी जे आवाज़ में बि तव्हांखे कलाम ॿुधाईंदासीं। तव्हां प्रोग्राम में पहिरियों दफ़ो शामिल थिया आहियो, तव्हांजूं मुहबतूं आहिनि, तव्हांजा कुर्ब आहिनि, तव्हांजो प्यारु आहे ॻोठु। मोहम्मद याकूब संदीलो खां मोहम्मद हारून संदीलो पंहिंजे प्रोग्राम ॾे पियो, अदा जन बि असांजे हर शो में शामिलु थींदा आहिनि। अदा हारून कहिड़ा हाल आहिनि तव्हांजा, ठीकु आहियो त भई सही आहे, तव्हांजी महिरबानी मिठा, तव्हां असांजे शो में शामिलु थिया आहियो, हुनजे लाइ खोड़ सारियूं मुहबतूं, खोड़ सारो प्यारु अव्हांजे लाइ। त अहिड़े तरीक़े सां तव्हां बि असांजे शो में शामिलु थी सघो था। ऐं अॼोके जेको प्रोग्राम आहे न, उन में सिर्फ़ु मोरो जा मैसेज अची रहिया आहिनि, ॿियनि दोस्तनि जा मैसेज न आहिनि पहुता, त लॻे थो मोरो वारा सुजाग आहिनि, बाक़ी ॿिया अञा थोरी निंड में सुता पिया आहिनि। बाबा गर्मी लॻी पई आहे, तमामु घणी निंड मां जागो। ऐं ॿी अञा तव्हांखे ॿी हिकिड़ी मज़े जी ॻाल्हि मां ॿुधाईंदो हलां त ईंदड़ हफ़्ते खां वठी अञा वधीक तेज़ गर्मी थींदी, ऐं ईंदड़ हफ़्ते में जेको असां शो कंदासीं न, उहो शो तेज़ गर्मियुनि में हूंदो।

0: तफरी से रिश्ता जोड़ो सुनते रहो मोरो की आवाज।
1: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: विश करे कमेंट, बातें तेरी दिल पे ना देती मेरे गेंद, ना करू तुझे ब्लॉक ना करू तुझे बैन, तू ना मेरा हेटर तू तो मेरा फैन।
1: वाइट एच ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा वाइटमिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज। आप
2: हैरत अंगेज जदीद मशीन जरिए पंहिंजो चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक तरीक़े इलाज सां शिफ़ा हासिल करियो। जी हाँ, हाणे अवां जे पंहिंजे शहर सकरण में हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक ते मशहूरु मारूफ़ ख़ानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब PHMS सिंध RHMP पाकिस्तान जनरल फिज़िशियन माहिर अमराज मैदो ऐं जिगर जी गर्माइश गुर्दे जी पथरी ऐं सोज पुराणी खंघ ज़ुकाम दिल जी तकलीफ़ अधु मथे जो सूर अखियुनि जी ख़ारिश जोड़नि जो सूर बुखार बारन जो देर सा हलन फालेज शुगर दिमागी कमजोरी खारिश नासूर खूनी ऐं बादी बवासीर इन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वेंदो आहे। होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब टाइम रोज़ानो सुबुह 9 वॻे खां शाम 6 वॻे ताईं पर जुमो 12 वॻे ताईं। एड्रेस हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक स्टेशन रोड सकरण। वधीक मशवरे ऐं राब्ते जे लाइ 0327 99

पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज।
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: It's 12 PM. This time check is brought to you by
2: Al Habib Current Plus Account. भरोसा भी, रफ्तार भी, बैंक Al Habib, रिश्ता भरोसे का।

0: आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: आहे पाकिस्तान हिकु वॾो मुल्क आहे ऐं हुन जा मुख़्तलिफ़ मुल्कनि सां घण रुखा लाॻापा आहिनि। पाकिस्तान खे चीन सां पंहिंजे सहकार खे ज़हन में रखणो पवंदो। हर को चीन सां लाॻापा क़ाइमु करे रहियो आहे। रूसी सदर व्लादिमीर प्यूटन जूं सेनेट पीट्सबर्ग में आलमी काबरू इदारनि जी सहाफ़नि सां ॻाल्हियूं। रूसी सदर चयो त असां पाकिस्तान ऐं भारत विच में सरहदी मसइले जे मुंझारनि खे चङी रीति सम्झूं था। चीन ऐं भारत ॿिन्ही सां असांजा पंहिंजा लाॻापा आहिनि। रूस ऐं भारत जा लाॻापा चीन खे परेशान नथा कनि ऐं चीन असां सां लाॻापा भारत लाइ परेशान कंदड़ न आहिनि। ईरान सां मुआदो थी वञे थो त मुश्तबा ख़ामनाई सां मुलाक़ात मुंहिंजे लाइ एज़ाज़ जी ॻाल्हि हूंदी। फ़िलहाल ईरानी सुप्रीम लीडर सां मुलाक़ात जी ख़्वाहिश नाहे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जूं व्हाइट हाउस में मीडिया सां ॻाल्हियूं। अमरीकी ऑपरेशन में ईरानी सुप्रीम लीडर जो वालिद, घरवारी ऐं ॿार मारिजी विया। छा हू तव्हां ते नाराज़ न हूंदो ऐं तव्हां सां मुलाक़ात कंदो? सहाफ़ी जो अमरीकी सदर खां सवालु। ट्रंप जवाब में चयो त मां शायदि हुन जे लाइ पसंदीदा शख़्स न हुजां, पर हू हिकु प्रोफेशनल माण्हू आहे जेको हल्कनि में ईरानी सुप्रीम लीडर जी सुठी शोहरत बि आहे। डोनाल्ड ट्रंप वधीक चयो त कुझु माण्हू हुन जे बारे में नाकारी ॻाल्हियूं कनि था, पर घणा माण्हू मुंहिंजे लाइ बि नाकारी ॻाल्हियूं कनि था।

साल आबाद शाख ओवरटॉप थियण सबबि पाणी रहीमाबाद कॉलोनी में दाख़िल कॉलोनी जो रोड ऐं घर पाणी हेठि अची विया। इलाइक़े वासियुनि जो चवणु आहे त आपाशी अमलदारनि जी लापरवाही सबबि शाख जा कपर खाली विया। वधीक पाणी छोड़ थियण सबबि ओवरटॉप थी घरनि में दाख़िल थी वियो। इलाइक़े वासियुनि तरफ़ां मशीनरी ज़रिए शाख खे बंदि ॿधण ऐं घरनि मां फौरी तौरु पाणी निकाल कराइण जो मुतालबो।

शिकारपुर वेझो कानपुर कचे के बदनाम धाड़ेल बेलो तेगानी समेत 50 का वधिक दुआरन सरेंडर कर छो 1 करोड़ रुपया इनाम याफ्ता धाड़ेल बेलो तेगानी समेत 50 दुहारन हथियार फिटा कर छा सरेंडर कदर अली गुल तेगानी मंजूर जाफरी अलहया नंदवानी से 50-50 लख रुपया इनाम रखल है अब्दुलरहमान तेगानी से 40 लख मोहरम तेगानी से 30 लख रुपया इनाम रखल है वहीद सब्जोई टोड़ो उर्फ मीर शर सुल्तान बजारणी बशीर भयो से 20-20 लख रुपया इनाम रखल मंजूर तेगानी से 10 लख रुपया इनाम रखल है डोहार के सरेंडर बाबत DIG SSP शिकारपुर अज ग प्रेस कॉन्फ्रेंस कदा फैज़गंज में जिरगे जरिए कारी करार दिनल टिन बारन की माओ कुहाड़ू हणी कतल गोठ अलह जुड़े शर में जवाबदार अली रजा शर भेणी वे घर में घेरी पेंजी भेण गुलाम सुगरा शर के कतल करे फरार लाश अस्पताल मुंतकिल कुछ वक्त अग नारी के जाबर शर नाले नौजवान सा कार की तोहमत मड़े जिरगो कराए वे हो जिरगे में इल्ज़ाम हेठ आयल जाबर शर से 20 लख रुपया दंड भी रखो वो हो ऐं सिंधड़ी में पानी खोट खिलाफ़ सामारो शाक बस स्टाफ वट धरणो आबादगारनि जे धरणे सबबि खिपरो बीरपुर खास रोड ब्लॉक आबादगारनि जो चवणु आहे त खिपरो केनाल मां निकिरंदड़ गरहूर शाख जी पुछड़ीअ में पाणी अणलब आहे पाणी न हुअण करे फसल सड़ी रहिया आहिनि मुज़ाहिरनि तरफ़ां पुछड़ीअ ताईं पाणी फराहम करण जो मुतालबो

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: जदीद मशीन जरिए पंहिंजो चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक तरीक़े इलाज सां शिफ़ा हासिल करियो। पंहिंजे शहर हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक ते मशहूरु मारूफ़ ख़ानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब DHMS सिंध RHMP पाकिस्तान जनरल फिज़िशियन माहिर अमराज मैदो ऐं जिगर जी गर्माइश गुर्दे जी पथरी ऐं सोज पुराणी खंघ ज़ुकाम दिलि जी तकलीफ़ अध मथे जो सूर अखियुनि जी ख़ारिश जोड़नि जो सूर बुखार ॿारनि जो देर सां हलण फालिज शुगर दिमाग़ी कमज़ोरी ख़ारिश नासूर खूनी ऐं बादी बवासीर इन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वेंदो आहे। होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब टाइम रोज़ानो सुबुह 9 वॻे खां शाम 6 वॻे ताईं बरोज़ जुमो 12 वॻे ताईं। एड्रेस हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक स्टेशन रोड सकर। वधीक मशवरे ऐं राब्ते जे लाइ 0327-99-84-763।
2: आप सुन रहे हैं
3: GAFM 88
2: नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: It's 12:15 p.m.
1: This time check is brought to you by D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
2: Sindh ki ho to aawaz bhi Sindh ki hai. GFM 88 Network. GFM 88 Network. Sindh ki aawaz.
3: में दुखियो कम है केतरी भी दुनिया तरक्की करे वने केतरा भी मानू तरक्की करे वन केड़े किस्म जा भी माहौल पैदा थी वन केड़े किस्म जी भी तरबियतू अची वन केड़ा प्लेटफॉर्म्स अची वन आई केड़े किस्म जो सोशल मीडिया एक्टिविटीज होजन पर उन जे बावजूद जेका दिल आए ना इंसानी दिल जेका कुदरत जे तरफ का मिलल एक कुदरती तोहफो आहे उन जे अंदर समायल मानू पंहिंजी अहमियत खे कॾहिं बि नाहे विसारे सघंदो ऐं उहा कॾहिं बि घटिजी बि न सघी आहे दुनिया जी तेज़ तरीन तरक़ी याफ़्ता जेको दौरु हले पियो उन तरक़ी याफ़्ता दौर में बि अच्छा अॼु बि माण्हुनि जी दिलनि में मोहबतूं न आहिनि रहियूं छा बिल्कुलु माण्हुनि जी दिलनि में मोहबतूं आहिनि माण्हुनि जी दिलनि में प्यार बि आहे माण्हुनि जी दिलनि में इख़लाक़ बि आहे माण्हुनि जी दिलनि में ख़ुलूस बि आहे माण्हुनि जी दिलनि में मोहबत बि आहे

त वञा वेठा से कुछ दोस्तन जा मैसेजेस भी आहिनि उन मैसेजनि जी तरफ हलंदासीं ऐं मैसेजनि खां पोइ तव्हांखे शमन अली मीराली जो हिकिड़ो ॾाढो ज़बरदस्त ट्रेक आहे उहो ॿुधाईंदासीं ऐं त असां सां गॾु आहे फज़ुलाबाद खां थरी मीरवा अच्छा थरी मीरवा खां असांजो प्यारो भाई अब्दुल हक शर चयो त गुलाब भाई प्रोग्राम बहुत अच्छा आहे असांखे ढोल फ़क़ीर जो कलाम ॿुधायो त हाज़िर मुंहिंजा वेठा तव्हांखे तव्हांजे पसंदि जो सॉन्ग ज़रूरु ॿुधाईंदासीं अदा मोहम्मद हारून संदीलो पाण खे ॿुधे रहियो आहे ॻोठु मोहम्मद इब्राहिम संदीलो खां अदा हारून तव्हांजे पसंदि जो सॉन्ग मां प्ले कयो आहे ऐं उमेद त तव्हां उहो ॿुधो बि हूंदो इंजॉय बि कयो हूंदो ऐं तव्हांखे पसंदि बि आयो हूंदो छो जो आपदा परवीन शइ ई अहिड़ी आहे ऐं उनजो सॉन्ग बि अहिड़ा ई हूंदा आहिनि जो हर माण्हूअ खे पसंदि अचनि शमन अली मीराली जी ख़ूबसूरत आवाज़ ऐं तव्हांजो सुंदर समातो

शमल अली मिराली जो खूबसूरत आवाज़ ऐं तव्हांजो सुंदर समातू त प्रोग्राम में दोस्तनि जा मैसेजिस बि करे शामिल कंदा था हलूं, जेके प्यार ऐं मोहब्बत मथां असां ॾे करे रहिया आहिनि। यासीन गुदारो सकरण खां पंहिंजे प्रोग्राम में शामिल थियो आहे ऐं था चवनि था त असांखे फोटो ज़रदारी जो कलाम ॿुधायो था। हाज़िर प्यारा,

ताजन चवनि था अस्सलाम वालेकुम अदा कहिड़ा हाल आहिनि ख़ुशि आहियो जी अदा बिल्कुलु मां ठीकु ठाक आहियां ख़ुशि आहियां तव्हां ॿुधायो तव्हां कीअं आहियो ठीकु आहियो मिठा फैज़ुल्लाबाद ॻोठाए ठरी मीरवाह जो तव्हां ताजन जो ही ॿियो मैसेज आहे अब्दुल हक शर जो ऐं चवंदा था तव्हांजो प्रोग्राम ॾाढो सुठो आहे ऐं ढोल फ़क़ीर जे कलाम जी ताजन फरमाइश कई त हाज़िर प्यारा तव्हांखे तव्हांजे पसंदि जो सॉन्ग असां ज़रूरु ॿुधाईंदासीं कमरदीन खां शमन अली सोलंगी हुन सां गॾु आहे एहतशाम समीउल्ला नसरुल्ला सोलंगी चवंदा आपके प्रोग्राम बहुत अच्छा है शमन अली मीराली जे कलाम जी फरमाइश त प्यारा शमन अली मीराली जो कलाम मां ॾिसो त तव्हांजे चवण खां बग़ैर ई प्ले करे छॾियो आहे ऐं शमन अली मीराली जे कलाम हिन वक़्तु तव्हां उमेदु आहे त मज़ो बि शमन अली मीराली जे कलाम वरितो हूंदो ऐं इंजॉय बि कयो हूंदो ऐं अदाजन पहिरियों दफ़ो मुंहिंजे ख़्याल में मुंहिंजे शो में शामिलु थिया आहिनि त हुनखे स्पेशली मां पंहिंजे शो में भली कार चवां थो

फैज़ुल्लाबाद ॻोठाई ठरी मीरवाह जो तव्हां अदाजन जो ही ॿियो मैसेज आहे अब्दुल हक शर जो ऐं चवंदा था तव्हांजो प्रोग्राम ॾाढो सुठो आहे ऐं ढोल फ़कीर जे कलाम जी अदाजन फरमाइश कया त हाज़िर प्यारा तव्हांखे तव्हांजे पसंदि जो सॉन्ग असां ज़रूरु ॿुधाईंदासीं। कमरदीन खां शमन अली सोलंगी हुन सां गॾु आहे एहतशाम समीउल्ला नसरुल्ला सोलंगी चवंदा आपके प्रोग्राम बहुत अच्छा है। शमन अली मीराली जे कलाम जी फरमाइश

0: मानवारा सजनो सिंधी क्लासिक इदारे जी या कोशिश आहे त असा अवां जी खिदमत में
1: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

मंदूर सखीराणी जो खूबसूरत आवाज़ ऐं तव्हांजो सुंदर समातू त मुंहिंजा मिठासीं प्रोग्राम म्यूज़िक मस्तीअ जो वक़्तु पहुची वियो आहे। पंहिंजी पुॼाणीअ ते वञण खां पहिरियों हमेशह वांगुरु तव्हांखे चवंदासीं पंहिंजो घणे खां घणो ख़्यालु रखंदा कयो, पंहिंजनि दोस्तनि जो मिटनि माइटनि जो ख़्यालु रखंदा कयो, पाड़े वारनि जो ख़्यालु रखंदा कयो, दोस्तनि जो ऐं ख़ासि तौर ते जेके ही तेज़ तरीन गर्मियूं हली रहियूं आहिनि गर्मियुनि जे ॾींहंनि में पंहिंजे नंढड़नि ॿारनि जो ख़्यालु रखंदा कयो। हिन वक़्तु वेकेशन्स हली रहियूं आहिनि, मोकिलूं हली रहियूं आहिनि गर्मियुनि जूं, पर ॿारनि खे ट्यूशन वग़ैरह बि ॾींदा कयो। अगरि माउ ॿारनि जी पढ़ियल लिखियलु आहे त उहा पंहिंजे घर में पंहिंजे ॿारनि खे तालीम ज़रूरु ॾिए, ऐं जहिड़े तरीक़े सां घर में हुननि खे तालीम मिलंदी, स्कूल वारो माहौल मिलंदो, त हुननि खां जेको स्कूल जो कयल कमु आहे न उहो हरगिज़ न विसरंदो। ऐं पंहिंजे नियाणियुनि खे दीनी तालीम ज़रूरु ॾियो ऐं दुनियावी तालीम बि ज़रूरु ॾींदा कयो। उमेदु आहे मुंहिंजे हिन ॻाल्हि ते अमल कंदा। ऐं अॼोको ॾियारो जेको आहे दुनिया में माहौलियाती तब्दीलीअ जो ॾियारो आहे, त अॼु हिकिड़ो वणु ज़रूरु

रखिजो, नंढड़ो हुजे वॾो हुजे जेतिरो बि हुजे कोशिशि कजो हिकिड़ो वण ज़रूरु पोखियो, ऐं उहो वण पोखे करे तव्हां असांखे फोटू व्हाट्सअप कयो, ऐं उमेदु आहे त तव्हां मुंहिंजो इहो चवणु वठंदा। इनशाला ताला हयाती रही त वरी तव्हां सां गॾु गॾु हूंदासीं। ऐं मुंहिंजे प्ले लिस्ट में हदीका कयानी जो आवाज़ु आहे ॾाढो ज़बरदस्त, त हदीका कयानी जे आवाज़ सां गॾोगॾु हिन प्रोग्राम जो बि वक़्तु पहुची वियो आहे पंहिंजे ॿुधणे ते। हयाती रही त वरी गॾु हूंदासीं। अलह वाही अलह निगहबान।

मां नथो समझा तो पाकिस्तान चीन के कंट्रोल में है। पाकिस्तान एक वो मुल्क है, उन मुख्तलिफ़ मुल्क से घण रुखा लागापा है। पाकिस्तान के चीन से पैं सरकार के जहन में रखो पव हर को चीन से लागापा कायम कर रो है। रूसी सदर व्लादिमीर पुटिन जो सेंट पीटर्सबर्ग में आलमी खबरू इदारे की साफ़ से गाल रूसी सदर चो तो असा पाकिस्तान भारत विच में सरहदी मसलन के मुजारन के चंगी रीत समझूँ था। चीन ए भारत बिन्हीं सा असाजा पैंजा लागापा हैं। रूस ए भारत जा लागापा चीन के परेशान नथा कन। चीन असा सा लागापा भारत लाए परेशान कंदड़ ना।

ईरान सां मुआदो थी वञे थो त मुश्तबा खामनाई सां मुलाक़ात मुंहिंजे लाइ एज़ाज़ जी ॻाल्हि हूंदी। फ़िलहाल ईरानी सुप्रीम लीडर सां मुलाक़ात जी ख़्वाहिश नाहे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जूं व्हाइट हाउस में मीडिया सां ॻाल्हियूं। अमरीकी ऑपरेशन में ईरानी सुप्रीम लीडर जो वालिद, घरवारी ऐं ॿार मारिजी विया। छा हू तव्हां ते नाराज़ न हूंदो ऐं तव्हां सां मुलाक़ात कंदो? सहाफ़ी जो अमरीकी सदर ट्रंप खां सवालु। ट्रंप जवाब में चयो त मां शायदि हुन जे लाइ पसंदीदा शख़्स न हुजां, पर हू हिकु प्रोफेशनल माण्हू आहे। कुझु हल्कनि में ईरानी सुप्रीम लीडर जी सुठी शोहरत बि आहे। डोनाल्ड ट्रंप वधीक चयो त कुझु माण्हू हुन जे बारे में नाकारी ॻाल्हियूं कनि था, पर घणा माण्हू मुंहिंजे लाइ बि नाकारी ॻाल्हियूं कनि था।

कराची के इलाके गुलशन इकबाल में जो तैयब गोठ में झुग्गियन के बाह लगी वही केतर झुग्गियों सड़ी रख शहर के मुख्तलिफ़ इलाक़ में फायर ब्रिगेड तलब बाह वसायण जो कोशिशों जारी।

शिकारपुर वेझो खानपुर कचे जे बदनाम धाड़ियल मेलो तेगानी समेत 50 खां वधीक ॾोहारनि सरेंडर करे छॾियो। 1 करोड़ रुपया इनाम याफ़्ता धाड़ियल मेलो तेगानी समेत 50 ॾोहारनि हथियार फिटा करे छॾिया। सरेंडर कंदड़ अली गुल तेगानी, मंजूर जाफरी ऐं अलहयार नंदवाणी ते 50-50 लख रुपया इनाम रखियल आहे। अब्दुरमान तेगानी ते 40 लख ऐं मोहरम तेगानी ते 30 लख इनाम रखियल आहे। वहीद सब्ज़ोई, ट्रोड़ो उर्फ़ मीर शर, सुल्तान बजरानी ऐं बशीर भयो ते 20-20 लख रुपया इनाम रखियल। मंज़ूर तेगानी ते 10 लख रुपया इनाम रखियल आहे। ॾोहारे जे सिलेंडर बाबति DIG ऐं SSP शिकारपुर अॼु गॾियल प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदा।

कराची में क्लिफ्टन थाने जे एएसआई पारां रिश्वत वठण जी वीडियो वायरल। वीडियो में एएसआई फहीम शीशा कैफे खोलण जी इजाज़त ॾियण बाबति ॻाल्हाईंदे ऐं डील कराईंदड़ शख़्स पैसा ॻणींदे नज़र अची रहियो आहे। एसएसपी ॾखण मैज़ूर अली वायरल वीडियो जो नोटिस वठंदे एएसआई खे मुअतल करे छॾियो। एसडीओ क्लिफ्टन इंक्वायरी आफिसर मुक़रर। एसएसपी मैज़ूर अली चयो आहे त मुअतल कयल आफिसर ख़िलाफ़ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी थींदी। पुलिस अंदरि करप्शन कंहिं बि सूरत में बर्दाश्त न कई वेंदी।

फैज़गंज में जिरगे ज़रिए कारी करार ॾिनल टिन ॿारनि जी माउ कुहाड़ियूं हणी क़तल। ॻोठ अलह जुड़ियो शहर में जवाबदार अली रज़ा शहर भेणी वे जे घर में घिरी पंहिंजी भेण ग़ुलाम सुगरा शहर खे क़तल करे छॾियो। लाश अस्पताल मुंतकिल। कुझु वक़्त अॻु नारी खे जाबिर शहर नाले नौजवान सां कार जी तोहमत मड़े जिरगो करायो वियो हो। जिरगे में इल्ज़ाम हेठि आयल जाबिर शहर ते 20 लख रुपया दंड बि रखियो वियो हो।

0: ऐं सिंधड़ी में पानीकोट खिलाफ़ सामारो शाख बस स्टॉप वटि धरणो। आबादगारनि जे धरणे सबबि खिपरो बीरप्रकाश रोड ब्लॉक। आबादगारनि जो चवण आहे त खिपरो केनाल मां निकिरंदड़ गरहोड़ शाख जी पुछड़ीअ में पाणी अणंदब आहे। पाणी न हुअण करे फसल सड़ी रहिया आहिनि। मुज़ाहिरनि तरफ़ां पुछड़ीअ ताईं पाणी फराहम करण जो मुतालबो।
1: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
2: जदीद मशीन जरिए पंहिंजो चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक तरीक़े इलाज सां शिफ़ा हासिल करियो। जी हा, हाणे अवां जे पंहिंजे शहर सकरन में हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक ते मशहूरु मारूफ़ ख़ानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब DHMS सिंध RHMP पाकिस्तान जनरल फिज़िशियन माहिर अमराज मैदो ऐं जिगर जी गर्माइश गुर्दे जी पथरी ऐं सोज पुराणी खंघ ज़ुकाम दिलि जी तकलीफ़ अधु मथे जो सूर अखियुनि जी ख़ारिश जोड़नि जो सूर बुखार ॿारनि जो देर सां हलनि फालिज शुगर दिमाग़ी कमज़ोरी ख़ारिश नासूर खूनी ऐं बादी बवासीर इन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वेंदो आहे। होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब टाइम रोज़ानो सुबुह 9 वॻे खां शाम 6 वॻे ताईं परोस जुमो 12 वॻे ताईं। एड्रेस हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक स्टेशन रोड सकर। वधीक मशवरे ऐं राब्ते जे लाइ 0327-99-84-700।
3: सिंध का है ये मुनफरिद एजाज तहजीब की रखवाली और मेहमान नवाज।
4: गाडो सुठो
3: जीए FM 88 नेटवर्क
5: सिंध की आवाज।
6: आज मुझे घर में शादी भेनर

0: It's 1:15 p.m.
1: This time check is brought to you by White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह है मोहब्बत और यकजहती का पैगाम यहां वहां। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: man. Tu na mera hater, tu to mera fan.
1: White Age Beauty Cream, 5-Day Beauty Plan ke saath. Aloe Vera, Vitamins aur Avocado ki bharpoor khoobiyan, jiske minerals skin mein fully absorb ho jaye. Skin ko fair aur fresh banaye. Aapko de beta nikhra nikhra chehra. White Age Beauty Soap se mile. Chamakta nikhar taazgi ke saath. White Age Beauty Cream, Glowing Skin ka raaz. A product of Biocon International Pakistan.
2: हाणे हैरत अंगेज जदीद मशीन ज़रिए पंहिंजो चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक तरीक़े इलाज सां शिफ़ा हासिल करियो। जी हाँ, हाणे अव्हां जे पंहिंजे शहर सकरन में हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक ते मशहूर मारूफ खानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब, DHMS सिंध, RHMP पाकिस्तान, जनरल फिजिशियन, माहिर अमराज मैदो ऐं जिगर जी गर्माइश, गुर्दे जी पथरी ऐं सोज, पुराणी खंघ, ज़ुकाम, दिल जी तकलीफ़, अध मथे जो सूर, अखियुनि जी ख़ारिश, जोड़नि जो सूर, बुखार, बारन जो देर सा हलन, फालेज, शुगर, दिमागी कमजोरी, खारिश, नासूर, खूनी ऐं बादी बवासीर, इन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वेंदो आहे। होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब, टाइम रोज़ानो सुबुह 9 वॻे खां शाम 6 वॻे ताईं, बरोज़ जुमो 12 वॻे ताईं। एड्रेस हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक, स्टेशन रोड, सकरन। वधीक मशवरे ऐं राब्ते जे लाइ 0327-99

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज।
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

पाकिस्तान चीन के कंट्रोल में है। पाकिस्तान भारत में सरहद मसलन के बेहतर नमूने समझूं था। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन है तो पाकिस्तान बड़ो मुल्क है जिन मुख्तलिफ मुल्क से मजबूत ए मुस्तहकम लागापा। रूस ए चीन के लागापो मजबूत है।

सिक्योरिटी फोर्सेज जो बलोचिस्तान के जिले पंजगोर में ऑपरेशन छह दहशतगर्द मार गया आईएसपीआर मौजूद मुझे इतलात है फोर्सेज पंजगोर में ऑपरेशन किया ऑपरेशन दौरान हिंदुस्तानी फितने जहा छह दहशतगर्द मार गया केतरा ही थाक तबाह थी दहशतगर्द के खात्मे तक कार्रवाई जारी होंदियों

0: फैज़गंज वेझो घोट अलाजड़ो शहर में कारें इल्ज़ाम हेठि भाउ हथां भेण क़तल। जवाबदार रज़ा शर कुहाड़ी जा वार करे टिनि ॿारनि जी माउ सुगरा खे क़तल कयो, जवाबदार फरार। न्यूसदाबाद में क़ौमी शाहराह जे होटल तां लाश हथ, पुलिस मूजिबि लाश जी सुञाणप कराची वासी इरफान पठाण जे नाले सां थी आहे। फोती वारनि जो मिस्त्री हो। रादण ग्रिड स्टेशन जे चौथे ॾींहं बि बिजली बहाल न थी। रादण थली मोहबत नओं घोट शाह पंज समेत सवें ॻोठनि जी बिजली खां महरूम। सख़्तु गर्मी सबबि रहवासी तकलीफ़ में। मीरपुर माथिलू में बि वकीलनि जो घोटकी ज़िले जे चइनि ॾींहनि खां बंदि थियल बिजली बहाल लाइ एहतजाज। बिजली बहाल करण जो मुतालबो। सखर में बि गुज़िरियल ॿिनि ॾींहनि खां बिजली बंदि सबबि शहर जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में पाणी छॾी खोड़ पैदा थी वई। रहवासियुनि जो एहतजाज।
1: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर KTN News।
2: अंगेज जदीद मशीन ज़रिए पंहिंजो चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक तरीक़े इलाज सां शिफ़ा हासिल करियो। जी हाँ, हाणे अव्हां जे पंहिंजे शहर सकरन में हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक ते मशहूरु मारूफ़ ख़ानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब, DHMS सिंध, RHMP पाकिस्तान, जनरल फिजिशियन, माहिर अमराज मैदो ऐं जिगर जी गर्माइश, गुर्दे जी पथरी ऐं सोज, पुराणी खंघ, ज़ुकाम, दिलि जी तकलीफ़, अधु मथे जो सूर, अखियुनि जी ख़ारिश, जोड़नि जो सूर, बुखार, ॿारनि जो देर सां हलणु, फालिज, शुगर, दिमाग़ी कमज़ोरी, ख़ारिश, नासूर, खूनी ऐं बादी बवासीर, इन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वेंदो आहे। होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब। टाइम रोज़ानो सुबुह 9 वॻे खां शाम 6 वॻे ताईं, बरोज़ जुमो 12 वॻे ताईं। एड्रेस: हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक, स्टेशन रोड, सकर। वधीक मशवरे ऐं राब्ते जे लाइ 0327-99-84-703।
3: हर चप्पा हर गोशा
4: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
3: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज
1: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
1: सकरण के हो तो आवाज भी सकरण की है
2: सुनते रहो GFM 90.8।

0: वफ़ाकी हुकूमत जो कराची शहर के मनसूबन सूबन लाइ फंड जारी रखने जो फैसलो। कराची रुस्तम गेटन और पानी के मनसूबन लाइ पैसा रखा वेंदा। वफ़ाकी बजट दस्तावेजन मूजिब कराची के ग्रीन लाइन सूबन लाइ 35 करोड़ रखा वेंदा। कोरंगी और मलीर जिले के मनसूबन लाइ 5 करोड़ रखने वाले तजवीज़ भी बजट में शामिल। कराची में चना मेडिकल कॉम्प्लेक्स एंड रिसर्च सेंटर के क्याम लाइ 40 करोड़ रखने की तजवीज़। नेशनल रिसर्च एंड फिजिबिलिटी केयर लाइ 39 करोड़ रखने की तजवीज़। कराची में भी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ नर्सिंग के क्याम लाइ 5 करोड़ रखने की तजवीज़। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ पारां वापारी अदालतन के क़याम लाइ कानून साज़ी जो फ़ैसिलो करे वरितो। मसूदे जी तयारी लाइ कमेटी क़ाइम। कानून वारे वज़ीर सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़, कमेटी जो कन्वेनर मुक़रर अटॉर्नी जनरल, नाणे वारे मुल्कती वज़ीर ऐं कानूनी माहिर कमेटी में शामिल। कमेटी वापारी अदालत जे क़याम बाबति कानूनी मसूदो तयार कंदे। कमेटी वापारी तकरारनि जे निज़ाम जो जाइज़ो वठी सिफ़ारिशूं पेश कंदी। कानूनी नुक़्तनि ते तफ़सीली रिपोर्ट बि तयार कई वेंदी। डील खां सवाइ ॿई रांदि यूरेनियम हासिल करे सघूं था, फ़ौजी कार्रवाई थिए या ॻाल्हियूं। कामयाबी अमरीका जी थींदी, अमरीकी सदर ट्रंप जो वाइट हाउस में तकरीब के ख़िताब। संदसि चवणु हो त मुआदे तहत ईरान एटमी हथियार नथो रखी सघे। असां ईरानी क़यादत नेवी ऐं फिज़ाया खे ख़तमु करे छॾियो। ईरानी सुप्रीम लीडर सां बि मुलाक़ात नथो करणु चाहियां, पर मुआदो थियण सूरत में मुलाक़ात मुमकिन आहे। लबनान जी सूरत हाल ते नज़र रखणी पवंदी। यूक्रेनी सदर ऐं रूसी सदर मुलाक़ात कनि त सुठो लॻंदो। भारत सां वापारी मुआदो जल्द थी सघे थो। ईरान सां मुआदे बाबति बि जल्द ख़बर पइजी वेंदी। ईरान जंग नथो चाहे, जारियत थी त भरपूर जवाब ॾिनो वेंदो। ईरानी परॾेही वज़ीर अब्बास अराग़ची चयो आहे ईरान जो मौक़िफ़ वाज़े आहे। तेहरान कंहिं बि हमले जी सूरत में पंहिंजो इतफ़ाक़ करण सां गॾोगॾु भरपूर जवाब बि ॾींदो। ईरान खिते में तकरारनि जो कॾहिं बि हामी न रहियो।
1: We are well aware of all the issues and the issues. First and foremost, Pakistan is a large country, and it has multifaceted ties with different countries. Of course, Pakistan.
0: नथो सम्झां, पाकिस्तान चीन जे कंट्रोल में आहे। पाकिस्तान ऐं भारत में सरहदी मसलनि खे बि बहितर नमूने सम्झूं था। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन चयो आहे त पाकिस्तान वॾो मुल्क आहे जंहिंजा मुख़्तलिफ़ मुल्कनि सां मज़बूत ऐं मुस्तहकम लाॻापा आहिनि। रूस ऐं चीन जा लाॻापा मज़बूत आहिनि।

नौशल फिरोज जी अदालत में पसंद जो पाण कदड़ जुड़े जो पेशे वक्त हथियारबंद पर पहुंची पाया। पुलिस अदालत में दाखिल थियण जी कोशिश कदड़ चयन के सोखो कर वरतो। पसंद पाण कदड़ पुलिस अहलकार इमदाद सोलंगी ए फौजी खोखर नौशल फिरोज में तरफ में पहुंचा था हथियारबंद पर पहुंची पाया। खोखर ब्रादरी के समय माण्हुनि जो पेशे वक्त अदालत के कड़ो चाढ़े छो। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज एस एस पी के तलब कर वरतो। जिले के समूरी नफरी के अदालत पहुंचने जो पैगाम।

गुज़िरियल साल घरू वज़ीर जी मौजूदगी में हथियार फिटा कंदड़ वारनि जे 8 महीननि बाद गिरफ़्तारी ज़ाहिर। सिंध हुकूमत जे हथियार फिटो करण वारी पॉलिसी तहत 22 अक्टूबर 2025 ते शिकारपुर पुलिस लाइन में घरू वज़ीर ज़ियाल अंजार ऐं अॻूणे आईजी सिंध ग़ुलाम नबी मेमूण साम्हूं धाड़ियल हथियार फिटो कंदड़ वारनि खे सरेंडर पॉलिसी तहत पुलिस जी निगरानी में रखियो वियो हो। शिकारपुर पुलिस वटि सरेंडर थियल धाड़ियलनि ते 4 करोड़ खां वधीक इनाम बि रखियल आहे। ज़रनि मूजिबि पुलिस द्वारनि खे ज़ाती जणनि जा ठाह करणु मुक़बर तौर ॿियनि धाड़ियुनि लाइ छॾियल हो। एस एस पी शिकारपुर धाड़ियुनि जी पेशी बाबति कुझु देरि में प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदो। राधन ग्रिड स्टेशन जे 4 ॾींहं बि बिजली बहाल न थी। राधन थरड़ी मोहबत ऐं नओं ॻोठु शाह 5 समेत सवें ॻोठ बिजलीअ खां बहिरूम। सख़्तु गर्मी सबबि रहवासियुनि जूं तकलीफ़ूं वधी पियूं। मीरपुर माथेलो में बि वकीलनि जो ॻोठु किजले जे 4 ॾींहनि खां बंदि थियल बिजली जी बहाली लाइ एहतजाज। सखर जे बि मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि जी बिजली 2 ॾींहनि खां बंदि। कुर्शी ॻोठु, नओं पिंड, पठाण कॉलोनी, माइक्रो कॉलोनी, शहर चौक, विजराणी चौक समेत 2 इलाइक़नि में बिजली जी बंदि सबबि पाणी जो बुहरान। सिंधड़ी में गरोड़ शाख जी पुछड़ ताईं पाणी न पहुचण ख़िलाफ़ आबादगरनि जो एहतजाज। खिपड़ो मीरपुर ख़ास रोड ते धरणो हयो वियो। आबादगरनि जो आपाशी हमले ते मुंड जे आबादगरनि खे पाणी वेगो करण जो इल्ज़ाम। पाणी चोरी रोकी गरोड़ शाख जी पुछड़ ताईं पाणी पहुचाइण जो मुतालबो। फैज़गंज जी अदालत में पाणी जी खोट ख़िलाफ़ पुछड़ी जी आबादगरनि जी दरख़्वास्त ते ॿुधणी। अदालत ईंदड़ ॿुधणीअ ते चीफ इंजीनियर ऐं एक्सएन खेरपुर खे ज़ाती हैसियत में तलब करे वरितो। एस टी ओ ते कावड़ जो इज़हार 3 ॾींहनि में पुछड़ी ताईं पाणी पहुचाए तस्वीरुनि सां गॾु रिपोर्ट पेश करण जो हुकम। सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में एस टी पी जा एहतजाज। शहीद मेमण खे बाज़ियाब कराए महांगाई ते ज़ाब्तो आणण जो मुतालबो। कनकोट, चंबड़, भरिया सिटी, ओबाड़ो ऐं ॿियनि शहरनि में एस टी पी पारां एहतजाजी मुज़ाहिरा कया विया। मुज़ाहिरनि चयो त सिंध में मनचाज जो विकिरो जारी आहे। अमन मंत्र हाल बि ख़राबु आहे, अमन बहाल करायो वञे।

गनकोट ऐं पासे में उड़ी ते ज़ाब्तो न आयो। उड़ी वॻे वधीक ॿ ॿार फोत, टिनि वरनि जो इलाही बख़्शियां, चइनि वरनि जो सोन लाशारी उड़ी वॻे फोत थिया। शहरनि जो चवणु आहे त उड़ी इलाइक़े में तेज़ीअ सां पखिड़िजी रही आहे। सिहत खाधो नोटिस वठे टीमूं मोकिले। सितार जा अॻवा ॼणायल ॾहें क्लास जी शागिर्दियाणी आसफा मुगल बाज़ियाब न थी सघी। नारी जी बाज़ियाबी लाइ वासन सियात समाज धुरन जो एहतजाज। मुज़ाहिरनि चयो त आसफा खे हुसैनाबाद मां 2 फेबरवरी ते स्कूल वेंदे अॻवा कयो वियो। पुलिस नारी खे बाज़ियाब करण में नाकाम थी वई आहे, बाज़ियाब करायो वञे।

शहरपुर में गुजरियल ॾींहुं ज़हर पी आबका जी कोशिश कंदड़ नौजवान दम ॾेई छॾियो। नौजवान जावेद चांडियो सिविल अस्पताल खैरपुर में इलाज दौरान दम ॾिनो। बाबडा कॉलोनी में नौजवान ज़ाल खालदा चांडियो घरू अमृत तां ज़हर पी छॾियो हो। नौजवान जी घरवारी गुज़िरियल ॾींहुं फौत थी वई हुई।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क सिंध।

0: Japan. Tu na mera hater, tu to mera fan.
1: White H Beauty Cream, 5-day beauty plan ke saath. Aloe vera, vitamins aur avocado ki bharpoor khoobiyan, jiske minerals skin mein fully absorb ho jaye, skin ko fair aur fresh banaye. Aapko de beta nikhra nikhra chehra. White H Beauty Soap se mile, chamakta nikhar taazgi ke saath. White H Beauty Cream, glowing skin ka raaz. A product of Biocon International Pakistan.
2: हैरत अंगेज जदीद मशीन जरिए पंहिंजो चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक तरीक़े इलाज सां शिफ़ा हासिल करियो। जी हाँ, हाणे अवां जे पंहिंजे शहर सकरन में हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक ते मशहूरु मारूफ़ ख़ानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब DHMS सिंध RHMP पाकिस्तान जनरल फिज़िशियन माहिर अमराज मैदो ऐं जिगर जी गर्माइश गुर्दे जी पथरी ऐं सोज पुराणी खंघ ज़ुकाम दिल जी तकलीफ़ अधु मथे जो सूर अखियुनि जी ख़ारिश जोड़नि जो सूर बुखार ॿारनि जो देर सां हलणु फालिज शुगर दिमाग़ी कमज़ोरी ख़ारिश नासूर खूनी ऐं बादी बवासीर इन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वेंदो आहे। होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब टाइम रोज़ानो सुबुह 9 वॻे खां शाम 6 वॻे ताईं बरोज़ जुमो 12 वॻे ताईं। एड्रेस हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक स्टेशन रोड सकर। वधीक मशवरे ऐं राब्ते जे लाइ 0327-99-84-700।
3: पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट यू बाय
1: अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी रफ्तार भी, बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
3: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: वफ़ाक़ी हुकूमत जो कराची शहर जे मुख़्तलिफ़ मनसूबनि लाइ फंड जारी रखण जो फ़ैसिलो, कराची जे रस्तनि, घिटियुनि ऐं पाणी जे मनसूबनि लाइ बि पैसा रखिया वेंदा। वफ़ाक़ी बजट जे दस्तावेज़नि मूजिबि कराची जे ग्रीन लाइन बस सर्विस लाइ 98 करोड़ रखण जी तजवीज़, ज़िले ओला जे मनसूबनि लाइ 26 करोड़, नाज़िमाबाद ऐं लियाक़ताबाद जे मनसूबनि लाइ 37 करोड़ रखण जी तजवीज़, कोरंगी टाउन जे मनसूबनि लाइ 35 करोड़ रखिया वेंदा। कोरंगी ऐं मलियो ज़िले जे मनसूबनि लाइ 5 करोड़ तजवीज़ पे बजट शामिल। कराची में जना मेडिकल कॉम्प्लेक्स ऐं रिसर्च सेंटर जे क़याम लाइ 40 करोड़ रखण जी तजवीज़, नेशनल रिसर्च एंड फिज़िबिलिटी केयर लाइ 39 करोड़ रखण जी तजवीज़, कराची में नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ नर्सिंग जे क़याम लाइ 5 करोड़ रखण जी तजवीज़। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ वापारी अदालतनि जे क़याम लाइ क़ानूनी साज़ जो फ़ैसिलो करे वरितो। मसइले जी तयारी लाइ कमेटी क़ाइमु। क़ानून वारे वज़ीर सैनर आज़म नज़ीर तारड़, कामेडी जो कन्वीनर मुक़रर, अटॉर्नी जनरल नाणे वारे ममलिकती वज़ीर ऐं क़ानूनी माहिर कमेटी में शामिल। कमेटी वापारी अदालत जे क़याम बाबति क़ानूनी मसूदो तयारु कंदी। कमेटीअ वापारी तकरारनि जे निज़ाम जो जाइज़ो वठी सिफ़ारिशूं पेश कंदी। क़ानूनी नुक़्तनि ते तफ़सीली रिपोर्ट बि तयारु कई वेंदी। डील खां सवाइ बि ईरान जो यूरेनियम हासिल करे सघूं था। फ़ौजी कार्रवाई थिए या गारियूं, कामयाबी अमरीका जी ई थींदी। अमरीकी सदर ट्रंप जो व्हाइट हाउस में तकरीब ख़िताब, संदसि चवण हो त मुआदे तहत ईरानी एटमी हथियार नथो रखी सघे। असां ईरानी क़यादत, नेवी ऐं फिज़ाए खे ख़तम करे छॾियो। लबनान सूरत हाल ते नज़र रखणी पवंदी। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की रूसी सदर प्यूटिन मुलाक़ात कनि त सुठो लॻंदो।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: हाणे हैरत अंगेज़ ऐं जदीद मशीन ज़रिए पंहिंजो चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक तरीक़े इलाज सां शिफ़ा हासिल करियो। जी हा, हाणे अव्हां जे पंहिंजे शहर सकरण में हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक ते मशहूरु मारूफ़ ख़ानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब, DHMS सिंध, RHMP पाकिस्तान, जनरल फिज़िशियन, माहिर अमराज मैदो ऐं जिगर जी गर्माइश, गुर्दे जी पथरी ऐं सोज, पुराणी खंघ, ज़ुकाम, दिलि जी तकलीफ़, अधु मथे जो सूर, अखियुनि जी ख़ारिश, जोड़नि जो सूर, बुखार, ॿारनि जो देर सां हलण, फालिज, शुगर, दिमाग़ी कमज़ोरी, ख़ारिश, नासूर, खूनी ऐं बादी बवासीर, इन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वेंदो आहे। होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब। टाइम रोज़ानो सुबुह 9 वॻे खां शाम 6 वॻे ताईं, परोस जुमो 12 वॻे ताईं। एड्रेस हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक, स्टेशन रोड, सकर। वधीक मशवरे ऐं राब्ते जे लाइ 0327-99-84-700।
3: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह मोहब्बत और यकजहती का पैगाम यहां वहां। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज।
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: हर चप्पा हर गोशा।
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: सकरण की हो तो आवाज भी सकरण की है।
0: सुनते रहो GAFM 90.8।

0: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट यू बाय
1: बैंकल हबीब रिश्ता भरोसे का
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
3: सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है GFM 88 नेटवर्क GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज

0: सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज। आप सुन रहे
1: ईरान जंग नथो चाहे जारियत थी त भरपूर जवाब दिनो विंदो। ईरानी परदेही वजीर अब्बास राखची चयो आहे त ईरान जो मौके वाज़े आहे त तेहरान कंहिं बि हमले जी सूरत में पंहिंजो दिफ़ा करण सां गॾु भरपूर जवाब ॾींदो। ईरान खिते में तकरारुनि जो कॾहिं बि हामी नाहे रहियो।
2: We are well aware of all the issues and the issues. First and foremost, Pakistan is a large country, and it has multifaceted ties with different countries. Of course, Pakistan.
1: नथो सम्झां त पाकिस्तान चीन जे कंट्रोल में आहे। पाकिस्तान ऐं भारत में सरहदी मसलनि खे बि बहितर नमूने सम्झूं था। रूसी सदर व्लादिमीर पुटिन चयो आहे त पाकिस्तान वॾो मुल्क आहे जंहिंजा मुख़्तलिफ़ मुल्कनि सां मज़बूत ऐं मुस्तहकम लाॻापा आहिनि। रूस ऐं चीन जा लाॻापा बि मज़बूत आहिनि। ईरान ऐं अमरीका विच में जंग बाद पाकिस्तान सफारती किरदार सबबि वाशिंगटन जो अहम इतिहादी थी वियो। अमरीका ईरान जंग दौरान पाकिस्तान अहम सफारतकारी किरदार अदा कयो। अमरीकी मीडिया चयो आहे त फील्ड मार्शल आसिम मुनीर शुरूआती जंगबंदीअ में अहम किरदार अदा कयो। सदर ट्रंप फील्ड मार्शल ऐं वज़ीर आज़म जी केतिरा ई भेरा तारीफ़ बि करे चुको आहे। मुस्तक़िल मुआहिदे ते पहुचणु अञा बि वॾो चैलेंज बणियलु आहे। पाकिस्तान घुरबल नतीजा न ॾिना त अमरीकी नाराज़गी ऐं दॿाउ जो शिकार थी सघे थो। पाकिस्तान आलमी सतह ते किरदार अदा करण लाइ पुरज़म आहे। दुनिया खे महफ़ूज़ करण लाइ सरहदनि जी सिक्योरिटी लाइ बि क़दम खणणु ज़रूरी आहिनि। बिश्केक में तकरीब खे ख़िताब कंदे वफ़ाक़ी घरेलू वज़ीर मोहसिन नक़वी चयो त बॉर्डर सिक्योरिटी लाइ SCO जो प्लेटफॉर्म अहम आहे। पुरअमन दुनिया तरफ़ वधणो आहे जंहिं लाइ गॾियल कोशिशूं करणियूं पवंदियूं। घरेलू वज़ीर बिश्केक में ईरानी हमन सब सां बि ॿीहर मुलाक़ात कई। ॿिन्ही घरेलू वज़ीरनि तकरार जे ख़ात्मे लाइ सफ़ारती कोशिशूं जारी रखण ते बि ज़ोर भरियो आहे।

सिक्योरिटी फोर्सेज जो बलोचिस्तान के जिले पंजकोड में ऑपरेशन छह दहशतगर्द मारजी वाया एस पी आर मूजिब गुजे इतलाते फोर्सेज पंजकोड में ऑपरेशन किया। ऑपरेशन दौरान हिंदुस्तानी फितने जहा छह दहशतगर्द मारजी वाया केतरा ही थाक में तबाह थे वह दहशतगर्दन के खात्मे ताई कार्रवाई जारी रखी। नौशरो फिरोज की अदालत पसंद परणो कंदड़ पुलिस अहलकार इमदाद सोलंगी की जमानत मंजूर कर वरती। जोड़े के तहफुज दियण जो हुकुम केस बुधणी लाए मोरू मुंतकिल। पुलिस जोड़े की पेशी वक्त अदालत में दाखिल थियण की कोशिश कंदड़ चार जणन के हथियार समेत सोगो कर वरतो। जोड़े की पेशी वक्त खोखर बिरादरी से ताल्लुक रखंदड़ मानू वडे अग में अदालत बाहर पौता हुआ। पुलिस अहलकार इमदाद सोलंगी ए फौजिया खोखर कुछ डी पे पसंद जो परणो कर। गुजरियल साल घरू वजीर की मौजूदगी में हथियार फिटा कंदड़ डोहारन की अठ महीनन बाद गिरफ्तारी जाहिर। सिंध हुकूमत की हथियार फिटो करने वाली पॉलिसी तहत 22 अक्टूबर 2025 से शिकारपुर पुलिस लाइन में घरू वजीर ज़िया लंजार ए अगूणे आई जी सिंध गुलाम नबी मेमन सामू धाड़ियल हथियार फिटो कंदड़ डोहारन के सरेंडर पॉलिसी तहत पुलिस की निगरानी में रखो हो। शिकारपुर पुलिस वट सरेंडर थियल धाड़ियलन 4 करोड़ का इनाम भी रखल है।

0: सिंध के मुख्तलिफ शहर में एस टी पी जै एहतजाज सईद मेमण के बाजियाब कराए महंगाई से जब्तो आने जो मुतालबो कंदकोट चंबण बिरयासिटी उबाड़ू और बेन शहर में एस टी पी पारा एहतजाज किया वो।
1: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
2: माल तैयार है, ट्रक खड़ा है, मजदूर खड़े हैं, बस एक चीज का इंतजार है, पेमेंट। कारोबार चलाने के लिए सिर्फ सामान नहीं, रिलायबल बैंकिंग भी चाहिए होती है। बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए। इसलिए मेरे पास है बैंक अलहबीब का अलहबीब करंट प्लस अकाउंट, जिसमें मिले फ्री चेक बुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अलहबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट फैसिलिटी, ATM और कैश डिपॉजिट मशीन की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क। अलहबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी, रफ्तार भी। बैंक अलहबीब, रिश्ता भरोसे का।
3: हैरत अंगेज जदीद मशीन जरिए पंहिंजो चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक तरीक़े इलाज सां शिफ़ा हासिल करियो। जी हाँ, हाणे अवां जे पंहिंजे शहर सकरन में हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक ते मशहूरु मारूफ़ ख़ानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब DHMS सिंध RHMP पाकिस्तान जनरल फिजिशियन माहिर अमराज मैदो ऐं जिगर जी गर्माइश गुर्दे जी पथरी ऐं सोज पुराणी खंघ ज़ुकाम दिल जी तकलीफ़ अधु मथे जो सूर अखियुनि जी ख़ारिश जोड़नि जो सूर बुखार बारन जो देर सा हलन फालेज शुगर दिमागी कमजोरी खारिश नासूर खूनी ऐं बादी बवासीर इन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वेंदो आहे। होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब टाइम रोजानो सुबुह 9 AM खां शाम 6 AM ताईं परोस जुमो 12 AM ताईं। एड्रेस हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक स्टेशन रोड सकरन। वधीक मशवरे ऐं राब्ते जे लाइ 0327-99-84-763।
4: सकरण के हो तो आवाज भी सकरण की है।
5: सुनते रहो GFM 90.8।

0: मशहूर ऐं मेडिकल जी दुनिया जो वॾो नालो प्रोफेसर
1: अदबानी साहब आपका बहुत शुक्रिया। अशप्रेस महर साहब कहते हैं अशफाक खान जिंदाबाद, थैंक यू सो मच मेरा प्रिंस भाई जिंदाबाद। और जनाब कहते हैं हमेशा जीते रहो मुस्कुराते रहो डियर, सेम टू यू मेरे प्यारे से भाई प्रिंस महर भाई, आप भी हमेशा जीते रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, खुशियों में खेलते रहें। रशीद हुसैन हमारे साथ हैं इसके साथ और लेते हैं शो की एक और कॉल। अस्सलाम वालेकुम, राशिद हुसैन हमारे साथ हैं, सॉरी। अस्सलाम वालेकुम, अरे बाबा कॉल ही कट जी भाई, बटन द शो जी भी कॉल। अस्सलाम वालेकुम जी, अदा खेर असा सबनी सांगर
2: साईं कुर्बान फुलपुरो शहीद खेर को
1: कुर्बान फुलपुरो साहब शहीद शहर खाओ
2: ठेड़ी शहर,
1: अच्छा ठेड़ी शहर खाओ, ओके ओके। कुर्बान साहब खेर हाल चाल तबर

0: रेस्टोरेंट बिजनेस में हर सेकंड मैटर करता है. कस्टमर्स क्वालिटी के साथ डिस्काउंट्स भी चाहते हैं. बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए. इसीलिए मेरे पास है बैंक अल हबीब का अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, जिसमें मिले फ्री चेकबुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अल हबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट्स फैसिलिटी, ATMs एंड कैश डिपॉजिट मशीन्स की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क. अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी, रफ्तार भी. बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का.
1: अवां जी स्किन डल ए बेरोनक लगे थी, हाने पेंजी स्किन के दियो एक नओ ग्लो. पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन के बनाए फ्रेश, सॉफ्ट ए ग्लोइंग. इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो दी अवां के रेडिएंट लुक रोजानो जे इस्तेमाल सा हर किस्म जी स्किन जे लाए परफेक्ट. हाने थियो खूबसूरत थियन वधिक आसान. वाइट एज ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर दी. बेहतरीन रिजल्ट हासिल कर लाए वाइट एज ब्यूटी क्रीम सा गड. इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप. वाइट एश ब्यूटी सोप सा मिले चमकदार निखार ताजगी सा गड. वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज. अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान.
2: तंगेज़ जदीद मशीन जरिए पंहिंजो चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक तरीक़े इलाज सां शिफ़ा हासिल करियो. जी हाँ, हाणे अवां जे पंहिंजे शहर सकरण में हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक ते मशहूरु मारूफ़ ख़ानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब, DHMS सिंध, RHMP पाकिस्तान, जनरल फिजिशियन, माहिर अमराज मैदो ऐं जिगर जी गर्माइश, गुर्दे जी पथरी ऐं सोज, पुराणी खंघ, ज़ुकाम, दिल जी तकलीफ़, अधु मथे जो सूर, अखियुनि जी ख़ारिश, जोड़नि जो सूर, बुखार, बारन जो देर सा हलन, फालेज, शुगर, दिमागी कमजोरी, खारिश, नासूर, खूनी ए बादी बवासीर, इनन सबनिन बीमारन जो कामयाब इलाज कयो विंदो आहे. होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब. टाइम रोजानो सुबह 9 AM खां शाम 6 AM ताईं, बरोज जुम्मो 12 AM ताईं. एड्रेस हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक, स्टेशन रोड, सकर. वधिक मशवरे ए राब्ते जे लाए 0327-99-84-763.
3: सिंध के माथे का झूमर,
4: DFM 88 नेटवर्क,
3: सिंध की आवाज.

0: दिलदार, क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त। आई
1: डेट के कहने का विचार है
0: राजा खान, वाह वाह वाह वाह, थैंक यू सो मच माशुको साहब, आप आपके पास ओके जनाब, तां सबनी दोस्तन के असांजा सलाम, थैंक यू सो मच, पांजो खास ख्याल रखजो, ओके ओके सर, ओके ओके ओके ओके। जी जनाब, हमारे साथ थे माशुकोसो भाई, और माशुकोसो के भाई बाद हम जनाब जरूर इनका गाना प्ले करेंगे, लेकिन शो की एक और कॉल भी तो ले लेना जनाब। अस्सलाम वालेकुम, होए लगता है जनाब फिर कोई जनाब जो है कॉल्स पर कोई हुआ मानो जो ना डाण अची बैठी कॉल जे सिग्नल से, तो खैर कोई गाल ना है, असा इन डाण के भजायूं था जेसी ताई तवा असा सबरी सा गड रहो, असा के कॉल कियो जनाब 03000113488 असा जो नंबर आए, आई जनाब असा सा गड रहो शाम जे 7 बजे ताई, छो ता असा तवा सा गड तवा दिलदार, क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त। आई डेडिकेट कंहिंखे करण चाहियो था?
1: राजा खान,
0: वाह वाह वाह वाह, थैंक यू सो मच माशुको साहब, आप आपके पास ओके जनाब, तां सबनी दोस्तन के असांजा सलाम, थैंक यू सो मच, पांजो खास ख्याल रखजो, ओके ओके सर, ओके ओके ओके ओके। जी जनाब, हमारे साथ थे माशुकोसो भाई, और माशुकोसो के भाई बाद हम जनाब जरूर इनका गाना प्ले करेंगे, लेकिन शो की एक और कॉल भी तो ले लेना जनाब। अस्सलाम वालेकुम, होए लगता है जनाब फिर कोई जनाब जो है कॉल्स पर कोई हुआ मानो जो ना डाण अची बैठी कॉल जे सिग्नल से, तो खैर कोई गाल ना है, असा इन डाण के भजायूं था जेसी ताई तवा असा सबरी सा गड रहो, असा के कॉल कियो जनाब 03000113488 असा जो नंबर आए, आई जनाब असा सा गड रहो शाम जे 7 बजे ताई, छो त असा तवा सा गड तवा असा सा गड हुंदा आयो त तमाम घणो मज़ो ईंदो आहे, छो त अॼु फ्राइडे जी मोकल बि आहे, ऐं उहे बि जनाब जॾहिं मोकल हूंदी आहे त घर खां माण्हू ॿाहिरि निकिरंदो आहे, दोस्तनि सां गॾु चांहि शांहि पीअंदो आहे, दाप्तो शाप्तो खाईंदो आहे, ऐं उहो बि हाणे उज़े वारी ईद गुज़री आहे त दोस्तनि खे बि घुरायो, दावतूं कयो, कोई कबाब शबाब पकाए पचाए खणी अचो, कोई बिरयानी खणी अचे, माना जीअं गैदरिंग थी वञे त मज़ो अची वेंदो आहे। ऐं जनाब 5:43 टाइम इज़ राइट नाओ, ॿाहिरि हवा बि हले थी ऐं थोरो घणो मौसम सुठो बि आहे, पर हर कोई माण्हू चाहे थो त सुठा सुठा जेका आहिनि बादल अची वञनि ऐं बारिश बि थी वञे त ज़बरदस्त ॻाल्हि थी वञे, इहा सुठी ॻाल्हि आहे जनाब। असां वठूं त हाणे शो जी हिकिड़ी ॿी कॉल ऐं चाहूं था पंहिंजे कॉलर खे जनाब। अस्सलाम वालेकुम,
2: वालेकुम सलाम,
0: केर था असां सभिनी सां गॾु
2: जागदा साईं, सच पुछो त तव्हांजो शो बहितरीन हली चली रहियो आहे, कई ॿुधूं था तव्हांजो शो,
0: थैंक यू,
2: पर हे जेको भाचो आहे माशुक नालो हुयो न खोसे जो,
0: हा हा माशुक खोसो भाई,
2: हिन जे त साईं वरी शायरी रिकाटे तोड़े छॾिया,
0: ज़बरदस्त शायर आहे, ऐं माना इहे गाननि लाइ बि आई थिंक शायरी चवंदो आहे भाउ,
2: जी जी ज़बरदस्त यार, इहो जे ॿुधे थो त मां बि चवंदोमांसि त कॾहिं जे ताल लॻेव त मुंहिंजी बि शायरी मुंहिंजे नाले छॾियो बाबा,
0: सही सही सही माशुक भाई, तव्हांजो पैसे ज़रूरु ॿुधंदो, इहो ॿुधायो
2: हलूं था असां गर्मीअ जे हिसाब सां ऐं वणकारे जे हिसाब सां,
0: हा बिल्कुलु,
2: त असां बिल्कुलु सिंधू दरिया जे किनारे ते असांजो ॻोठ आहे, माना कच्छ जो इलाइक़ो आहे,
0: अच्छा गुड आहे,
2: कुरेशी ॻोठ खां उत्तर तरफ़ ते बंद खां हेठि लहो त अलफ़क चवंदो आहे, अलफ़क जे खां बाद में हल फिटल हिकिड़ो दरिया जो गस आहे, उन खां मथां आहे केतिरी छॾे,
0: सही,
2: हाणे तकरीबन वीहनि पंजवीहनि सालनि में पोइंटा वञूं त असां वटि वॾी वणकारी,
0: अच्छा
2: पबरो कंडी
0: पोइ
2: ਜਾਂ ਖੋੜ ਸਾਤਰਾ ਬਣਾ ਹੋਇਆ ਆਸਤੇ ਆਸਤੇ ਜੇ ਪਠਾਣ ਆਇਆ ਜਾਂ ਅਹਿੜੀ ਬੀ ਮੁਖਤਲਿਫ਼ ਕੌਮਾਂ ਆਯੂ ਤਾਂ ਵਣ ਕਟਜੀ ਆ।
0: ਅੱਛਾ, ਮਾਨਾ ਉਹਨਾਂ ਰਹਿਣ ਲਈ ਪੰਹਿੰਜਾ ਘਰ ਠਾਹਿਣ ਲਈ ਮਾਨਾ ਉੱਥੇ ਵਣ ਕੱਟੀ ਛੱਡਿਆ, ਮਾਨਾ ਜੇਕਾ ਬੀ ਬਰਾਦਰੀ ਸਾਂ
2: ਬਿਲਕੁਲ ਵਣ ਕਟਜੀ ਆ। ਹਾਣੀ ਮੁਸਲਸਲ ਜੇਕੋ ਆ ਤਾਂ ਬੱਬਰ ਵੱਡੋ ਥਾਦੋ ਆ ਸਿੰਧੀ ਬੱਬਰ ਆਏ ਨੀ।
0: ਜੀ ਜੀ।

0: जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: जदीद लेबोरेटरीज, कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी, हॉस्टल ऐं पिक एंड ड्रॉप जी सहूलियत ही इदारो सिंध हुकूमत जे हेल्थ डिपार्टमेंट का मंजूर थियल ऐं पाकिस्तान नर्सिंग एंड मिडवाइफरी काउंसिल का मुकमल तस्लीम थियल आहे। दाख़िला महदूद आहिनि, तंहिं करे अॼु ई राब्तो करियो। एड्रेस: सिराजुद्दीन एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स, Sector 5, सखर टाउनशिप, मेन बाईपास रोड, सखर। फोन नंबर 07153564208311207। सखर में होम्योपैथिक में 43 साल जो तजुर्बो रखंदड़ प्रोफेसर होम्योपैथिक डॉक्टर आगा लियाकत अली खान पठान, DHMS सिंध, RHMP इस्लामाबाद, मरीजन जो मुआइनो कर रहे आहे। हर किस्म के आसामी अमराज, जोड़न जो सूर, मैदे में जलन, कब्ज, तेजाबियत, गुर्दन जी पथरी, बवासीर, हाजमे जी खराबी, बेन बीमारियों जो बगैर ऑपरेशन होम्योपैथिक तरीका इलाज मुताबिक मरीजन जो इलाज कर रहे आहे। प्रोफेसर होम्योपैथिक डॉक्टर आगा लियाकत अली खान पठान, रोजाना सुबह 10 का शाम 5 ताई। जुम्मो मोकल। एड्रेस: आगा होम्योपैथिक क्लिनिक, पुलिस हेडक्वार्टर चौक, सखर। राब्ते जे लाइ 03-26-22-00-440।
2: सचल की सरमस्त धरती,
0: फातिये मेहरान, सिंध की एक और पहचान,
2: GFM 88 नेटवर्क,
0: सिंध की आवाज।

वफाकी हुकूमत जो नंढनि दुकानदारनि लाइ फिक्स टैक्स स्कीम आणण जो ऐलान नाणे वारे वज़ीर मोहम्मद औरंगज़ेब चयो आहे त टैक्स ॾींदड़ आसानी चाहे थो। स्कीम ज़रिए 30 खां 40 लख दुकानदारनि खे टैक्स जे दायरे में आंदो वेंदो। जेको तबो टैक्स न ॾींदो हो हाणे ॾियणु चाहे थो। ममलकती वज़ीर बिलाल अज़र कयानी जो चवणो हो त मुशावरत ऐं वापारी तनज़ीमनि जे मुतालबे ते टैक्स स्कीम आणे रहिया आहियूं। स्कीम सालियानी 20 करोड़ खां घटि सेल रखंदड़ दुकानदारनि ते लागू थींदी।

साल जी बजट में स्टेशनरी ते सेल्स टैक्स वाली रियायत खत्म करण जो मुतालबो करे छड़ियो। तालीमी सामान वधीक महांगो थियण जो इम्कान। ज़रियन मूजिबि हुकूमत IMF जे मुतालबे ते स्टेशनरी ते सेल्स टैक्स लॻाइण जो फ़ैसिलो कयो आहे। 1 जुलाई खां स्टेशनरी ते 18% टैक्स लॻण जो इम्कान आहे। वफ़ाक़ी हुकूमत नए माली साल जी बजट 10 जून ते पेश करण जो फ़ैसिलो कयो आहे।

वजीर आजम शाहबाजी वापारी अदालतों की क्याम लाए कानून साजी जो फैसलो करे वरतो मसवदे की तैयारी लाए कमेटी कायम कानून वारो वजीर सेनेटर आजम नजीर तारड़ कमेटी जो कन्वीनर मुकरर अटॉर्नी जनरल नाणे वारो मुमड़ी वजीर ए कानूनी माहिर कमेटी में शामिल कमेटी वापारी अदालत की क्याम बाबत कानून मसवदो तैयार कंदी कमेटी वापारी तकरार निजाम जो जायजो वठी सिफारिशों भी पेश कंदी कानूनी नुक्तन ते तफसीली रिपोर्ट भी तैयार की वेंदी। डील का सवाल बे ईरान जो यूरेनियम हासिल सकूं।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: शादी का इवेंट और स्टेज आधा तैयार, क्यों? क्योंकि वेंडर्स को चाहिए फौरी पेमेंट। इवेंट प्लानिंग हो या कोई और बिजनेस, पेमेंट रुक जाए तो काम भी रुक जाता है। बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए, इसलिए मेरे पास है बैंक अलहबीब का अलहबीब करंट अकाउंट, जिसमें मिले फ्री चेकबुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अलहबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट फैसिलिटी, ATM और कैश डिपॉजिट मशीन की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क, अलहबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी, रफ्तार भी, बैंक अलहबीब, रिश्ता भरोसे का।
2: जदीद मशीन जरिए पंहिंजो चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक तरीक़े इलाज सां शिफ़ा हासिल करियो। जी हाँ, हाणे अवां जे पंहिंजे शहर सकरन में हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक ते मशहूरु मारूफ खानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब, DHMS सिंध, RHMP पाकिस्तान, जनरल फिजिशियन, माहिर अमराज मैदो ऐं जिगर जी गर्माइश, गुर्दे जी पथरी ऐं सोज, पुराणी खंघ, ज़ुकाम, दिलि जी तकलीफ़, अधु मथे जो सूर, अखियुनि जी ख़ारिश, जोड़नि जो सूर, बुखार, ॿारनि जो देर सां हलण, फालिज, शुगर, दिमाग़ी कमज़ोरी, ख़ारिश, नासूर, खूनी ऐं बादी बवासीर, इन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वेंदो आहे। होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब, टाइम रोज़ानो सुबुह 9 AM खां शाम 6 AM ताईं, बरोज जुमो 12 AM ताईं। एड्रेस हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक, स्टेशन रोड, सकर। वधीक मशवरे ऐं राब्ते जे लाइ 0327-99-84-763।
3: अजरक के रंगों से रंगी,
4: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
3: सिंध के दिल से निकली आवाज, आवाज
4: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: It's 6:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
3: रेस्टोरेंट बिजनेस में हर सेकंड मैटर करता है. कस्टमर्स क्वालिटी के साथ डिस्काउंट्स भी चाहते हैं. बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए. इसीलिए मेरे पास है बैंक अल हबीब का अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, जिसमें मिले फ्री चेकबुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अल हबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट्स फैसिलिटी, ATMs एंड कैश डिपॉजिट मशीन्स की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क. अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी, रफ्तार भी. बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का.
4: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़.

के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

के हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंक की आवाज।

0: खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम इन में मौजूद विटामिन ए जदीद माइक्रोबीड्स फार्मूलो अवाजी इसकी ए चमकदार में डार्क स्पॉट्स के करे खत कुदरी स्किन ब्यूटी क्रीम शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
1: तैयार है ट्रक खड़ा है मजदूर का एक चीज का इंतजार है पेमेंट कारोबार चलाने के लिए सिर्फ सामान नहीं रिलायबल बैंकिंग भी चाहिए होती है बिजनेस करना आसान नहीं लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट इसलिए मेरे पास है बैंक अलबीब का अलबीब करंट अकाउंट जिसमें मिले फ्री चेक बुक इंटरेस्ट चेक ऑनलाइन बैंकिंग अलहा बैंकिंग और SMS अलर्ट फैसिलिटी ATM और कैश डिपॉजिट मशीन की इजी एक्सेसिबिलिटी मुल्क भर में फैल वसी नेटवर्क अल हबीब करंट प्लस अकाउंट भरोसा भी रफ्तार भी बैंक अलबीब रिश्ता भरो
2: आप सुन रहे हैं GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: शादी का इवेंट और स्टेज आधा तैयार। क्यों? क्योंकि वेंडर्स को चाहिए फौरी पेमेंट। इवेंट प्लानिंग हो या कोई और बिजनेस, पेमेंट रुक जाए तो काम भी रुक जाता है। बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए। इसलिए मेरे पास है बैंक अलहबीब का अलहबीब करंट अकाउंट, जिसमें मिले फ्री चेक बुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अलहबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट फैसिलिटी, ATM और कैश डिपॉजिट मशीन की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क। अलहबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी, रफ्तार भी। बैंक अलहबीब, रिश्ता भरोसे का।
1: सिंध का है ये मुनफरिद एजाज, तहजीब की रखवाली और मेहमान नवाज।
2: GAFM 88
1: नेटवर्क,
3: सिंध की आवाज़।

0: It's 7:15 p.m. This time check is brought to you by
1: White-ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: सिंध के माथे का झूमर
3: DFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज़।

0: शादी का इवेंट और स्टेज आधा तैयार, क्यों? क्योंकि वेंडर्स को चाहिए फौरी पेमेंट। इवेंट प्लानिंग हो या कोई और बिजनेस, पेमेंट रुक जाए तो काम भी रुक जाता है। बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए, इसलिए मेरे पास है बैंक अलहबीब का अलहबीब करंट अकाउंट, जिसमें मिले फ्री चेक बुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अलहबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट फैसिलिटी, ATM और कैश डिपॉजिट मशीन की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क। अलहबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी, रफ्तार भी। बैंक अलहबीब, रिश्ता भरोसे का।
1: जदीद मशीन जरिए पंहिंजो चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक तरीक़े इलाज सां शिफ़ा हासिल करियो। जी हाँ, हाणे अवां जे पंहिंजे शहर सकरन में हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक ते मशहूरु मारूफ़ ख़ानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब, DHMS सिंध, RHMP पाकिस्तान, जनरल फिजिशियन, माहिर अमराज़ मैदो ऐं जिगर जी गर्माइश, गुर्दे जी पथरी ऐं सोज, पुराणी खंघि, ज़ुकाम, दिलि जी तकलीफ़, अधु मथे जो सूर, अखियुनि जी ख़ारिश, जोड़नि जो सूर, बुखार, बारन जो देर सा हलन, फालेज, शुगर, दिमागी कमजोरी, खारिश, नासूर, खूनी ऐं बादी बवासीर, इन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वेंदो आहे। होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब। टाइम रोज़ानो सुबुह 9 वॻे खां शाम 6 वॻे ताईं, बरोज़ जुमो 12 वॻे ताईं। एड्रेस: हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक, स्टेशन रोड, सकर। वधीक मशवरे ऐं राब्ते जे लाइ 0327-99-84-763।
2: अजरक के रंगों से रंगी,
3: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज, आवाज
3: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: रेस्टोरेंट बिजनेस में हर सेकंड मैटर करता है। कस्टमर्स क्वालिटी के साथ डिस्काउंट्स भी चाहते हैं। बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए। इसीलिए मेरे पास है बैंक अल हबीब का अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, जिसमें मिले फ्री चेकबुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अल हबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट्स फैसिलिटी, ATMs एंड कैश डिपॉजिट मशीन्स की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क। अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी, रफ्तार भी। बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
1: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

के हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंक की आवाज।

0: देखिए सिलसिले 2 जनवरी से मंगल की रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।
1: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान जी एफ एम 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

गुजरियल भेरे गिलगित बल्तिस्तान वारनि जी वोट ते धाड़ो लॻो, हिन भेरे ज़्याती थियण न ॾींदासीं। अव्हां खे फार्म 45 जो बंदोबस्त करणो आहे। सिंध वांगुरु ज़मीन जा मालिकीअ जा हक़ ऐं सिहत जो निज़ाम जी जीपी खे असां ॾींदासीं। गिलगित बल्तिस्तान में चूंड जलसे खे ख़िताब कंदे पीपल्स पार्टी चेयरमैन चयो त गिलगित बल्तिस्तान वारनि खे फ़ैसिलो करणो आहे त संदन नुमाइंदगी केरु करे। खिते में जंग वारी सूरत हाल आहे। अमन वारनि फील्ड मार्शल जी कोशिशुनि जी कामयाबी लाइ दुआगू आहियूं।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: तंगे जदीद मशीन जरिए पंहिंजो चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक तरीक़े इलाज सां शिफ़ा हासिल करियो। जी हाँ, हाणे अवां जे पंहिंजे शहर सकरन में हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक ते मशहूरु मारूफ ख़ानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब, DHMS सिंध, RHMP पाकिस्तान, जनरल फिजिशियन, माहिर अमराज मैदो ऐं जिगर जी गर्माइश, गुर्दे जी पथरी ऐं सोज, पुराणी खंघ, ज़ुकाम, दिलि जी तकलीफ़, अध मथे जो सूर, अखियुनि जी ख़ारिश, जोड़नि जो सूर, बुखार, बारन जो देर सां हलन, फालेज, शुगर, दिमागी कमजोरी, खारिश, नासूर, खूनी ऐं बादी बवासीर, इन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वेंदो आहे। होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब। टाइम रोज़ानो सुबुह 9 वॻे खां शाम 6 वॻे ताईं, बरोज़ जुमो 12 वॻे ताईं। एड्रेस: हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक, स्टेशन रोड, सकर। वधीक मशवरे ऐं राब्ते जे लाइ 0327-99-84-763।
2: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान, GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

अस्सलाम वालेकुम, ये सकड़ नवाब शाह एफएम 90.8 जी लाइव स्टूडियो में प्रोग्राम सेहत जो राज होम्योपैथिक से पेश किए पे वे मां पैं मेजबान नादर अली मक्सी मुझे आवाज़ हवाओं के लहरों वसीले जिते जिते भी पूछी रो है उन सभी बुधदड़न के मुझे तरफा मोहब्बत सिख भर सलाम शाल कबूल पवे समय नवा जहाँ कड़ा हाल है उम्मीद त बिल्कुल ठीक ठाक खेर खेरियत से हूँ असोड़ सारियों दुआओं अवी सजण के नाम

0: डॉक्टर साहब माहिर अमराज आहिन नक कन गलो पुराणो नज़लो निछू मथे जो सूर मादे जी अल्सर मादे जी जलन तिली जो वधन जिगर जा मर्ज शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंग टीबी हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसान जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे इलाज कयो वेंदो आहे चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे की खारिश फुरड़ियों बारन में कद जो न वधन मर्दन ही औरतन में वजन जो न वधन इन सभी बीमार जो कामयाब इलाज किया वेंदो आहे डॉक्टर साहब रोजाना सुबह 9 वगे का शाम 6 वगे ताई हाजी इनायत क्लिनिक स्टेशन रोड सकड़ में मरीजन जो मुआइनो कंदा आहिन मरीजन जो चेकअप कंदा आहिन जुमे जे ॾींहुं ते सुबुह 9 वगे का मंझंदि 12 वगे ताईं डॉक्टर साहब क्लिनिक मौजूद हूंदा आहिनि डॉक्टर साहब जो मालूमाती नंबर आहे 0327-9984-763 0327-9984-763 समय डॉक्टर साहब अॼु जे दौर में सुठो इलाज करण सां गॾु मरीज़नि सां सुठो रवैयो सुठियूं ॻाल्हियूं ऐं तमामु घणो कुझु अव्हां जे सिखण जे लाइ बि डॉक्टर साहब अव्हां सां मुखातिबु थींदा आहिनि डॉक्टर साहब जी महिनत खुलूस ऐं पेशावराना क़ाबिलियत जो सबूत आहे डॉक्टर साहब असां सां गॾु लाइव स्टूडियो में मौजूदु आहिनि अचो त डॉक्टर साहब खां हाल अहिवाल कयूं ऐं टॉपिक जे बारे में बि डॉक्टर साहब खां पुछा उछा कयूं अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब
1: हेलो
0: अस्सलाम वालेकुम
1: वालेकुम अस्सलाम
0: डॉक्टर साहब कहिड़ा हाल आहिनि मुंहिंजा
1: अलहमदुल्ला
0: सर अॼु टॉपिक बि कंटिन्यू कंदासीं ऐं हुन सां कुझु असांजा सामिन जा सवाल बि आहिनि जेके अव्हां खां पुछंदासीं
1: जी बिल्कुलु अॼु जो प्रोग्राम में असां हूंदासीं अव्हां सां गॾु ऐं अव्हां जे सवालनि सां गॾु छो त जेॾी महिल नादिर ईंदो आहे त सवाल माशाल्लाह जाम कढी ईंदो आहे अलाए किथां ईंदो आहे सवाल त साईं हिन सां अॼु बि कोशिशि कंदुसि अव्हां जे सवालनि जो जवाब पिणु ॾींदासूं ऐं गॾु अव्हां खे कोन के इन सवालनि में बिचारी ॻाल्हाए जा जेका सवाल अहिड़ा हूंदा आहिनि जेका आम माण्हुनि जे ज़हननि में हूंदा आहिनि त उहे हिसाब में वेही या सोचींदो आहे पोइ वरी मुंहिंजे लाइ सवाल गॾु करे रखंदो आहे पोइ असां हुननि सवालनि जो जवाबु ॾींदा आहियूं त अॼु जे प्रोग्राम में बि ज़रूरु त नादिर साहब जो सवाल हूंदा ऐं सवाल अहिड़ा हूंदा जेको अव्हां खे बि उहा ई सवाल ज़हननि में ज़रूरु हूंदा त उन्हनि सवालनि जो बि जवाबु ॾींदासीं ऐं गॾु अव्हांजे लाइ अव्हांजी जेका कॉल्स ईंदियूं उन्हनि कॉलनि खे बि रिसीव करे अव्हांजे सवालनि जो बि जवाबु ॾींदासीं साम्हूं प्रोग्राम अॼोको जेको असांजो प्रोग्राम आहे सिहत जो राज होम्योपैथिक सां यानी कि इलाजु अहिड़ो हुजे जंहिंसां मरीज़ कुझु वक़्तु दवाऊं इस्तेमालु करे उन खां बाद में उनखे वरी दवाऊं इस्तेमालु करण जी ज़रूरत न पए इलाजु उहा शइ आहे ऐं उन में कुझु किरदारु असांजे पंहिंजो बि हूंदो आहे त जंहिंमें मुकमल इलाजु माण्हू कराए जंहिंसां बीमारी मुकमल जिस्म मां ख़तमु थिए सिहतियाबी थिए ऐं हमरा पेशेंट मरीज़ जेको बि आहे त उहा पंहिंजी लाइफ ज़िंदगी सुठे नमूने सां गुज़ारे का बि तकलीफ़ आहे मर्ज़ु आहे उनखे ख़तमु कराए परहेज़ जेको आहे उहा लाज़मी रखे छो त बीमारी ख़तमु थियण खां बाद में असां ईअं न कयूं त बसि हाणे बीमारी ख़तमु थी वई दवा खाइण जी ज़रूरत कान्हे का बसि हाणे वरी सां शुरू कयूं वरी शुरू कंदव त असां डॉक्टर बि अव्हांखे वरी चवंदासीं हलिया वापसि त इन करे अव्हां इन एहतियात बि घटि ज़रूरु कंदा इनशाह होम्योपैथिक जी दवाउनि सां अव्हांखे साइड इफेक्ट नथा थी सघनि नुक़सानु अव्हांखे नथो थी सघे छो त दवाऊं अलहमदिल्ला जेको उन्हनि जो कमु ऐं किरदारु जेको हूंदो आहे उहो तमामु बहितरीन ऐं सुठो हूंदो आहे सिहत जे हवाले सां अव्हांजी जेका रुटीन आहे ज़िंदगी आहे उन में जेका चेंजिंग ज़रूरु हूंदी आहे हवा असां जेका इलाजु कंदा आहियूं उन में असांजी सिर्फ़ु इहा कोशिशि न हूंदी आहे त बीमारी खां इलाजु करे उन इलाज खां बीमारी ख़तमु कयूं असांजी कोशिशि इहा बि हूंदी आहे त अव्हां जी जेका तकलीफ़ आहे जेका मर्ज़ु आहे उहो दवाउनि सां ख़तमु थिए पर उन सां गॾोगॾु हिकिड़ी शइ बि आहे त हीअ बीमारी अची वई आहे त अची वई आहे त पोइ इन जो अचण जी वजूहात छा आहिनि कुझु त बीमारी ईंदी आहे दवाउनि सां घणो इस्तेमाल सां कुझु तकलीफ़ मर्ज़ अहिड़ी शयूं खाइण जे करे अची पवंदी आहे ऐं उन खां अलावा बि कुझु मर्ज़ अहिड़ा आहिनि त जेका असांजी लाइफ ऐं ज़िंदगीअ में जेका असां कमु किरदारु कंदा आहियूं उन में कुझु अहिड़ी शयूं आहिनि त जंहिं ते असां कवर कयूं त इहा शयूं न थियनि त पोइ असांजो बीमारी बि असांखे नथी थी सघे। उहा शयूं बि असां हर पेशंट खे ॾिसी नोट करे असां उन जो इलाज पिणु कंदा आहियूं। समिन प्रोग्राम सिहत जो राज़ होम्योपैथिक में जेका असां अव्हांखे ॿुधायोसीं त प्रोग्राम सिहत जो राज़ होम्योपैथिक में इलाजु सिर्फ़ु न थींदो आहे, बीमारी आई किथां, उन जी शुरूआति किथां थी ऐं उन में कमु किरदारु असांजी दवाउनि जे करे, खाधे पीते जे करे थियो आहे या असांजी जेका लाइफ स्टाइल आहे उन जे करे असांखे तकलीफ़ थिए पई, बीमारी थिए पई, त उहा सभु शयूं जी असांखे ख़बर पए न, छो त असां डॉक्टर वटि वञूं था, आम डॉक्टर वटि वञूं था, MBBS जे वॾा वॾा डॉक्टर सर्जन प्रोफेसर ॾे वञूं था, हज़ार रुपया फीस भरे था अचूं, पर कमु छा थिए थो, दवा हले थी त असांखे तकलीफ़ कान्हे का, दवा ख़तमु त असांखे तकलीफ़ थिए पई। त इहा शइ छाजे करे आहे त इहा शयूं इन करे थींदियूं आहिनि त असांजी जेका रुटीन लाइफ ज़िंदगी जेका आहे उहा असांजी सही तरीक़े सां असां नथा गुज़ारियूं, उन में कुझु खाधा पीता अहिड़ा आहिनि जेको असांखे इस्तेमालु नाहे करणा ऐं उन जे करे असांखे कुझु मर्ज़ बीमारियूं थी पवंदियूं आहिनि। त उन्हनि शयुनि ते बि ग़ौर करणु ऐं उन जो इलाजु करणु असांजे होम्योपैथिक में ज़रूरु आहे। त इन करे होम्योपैथिक चवंदी आहे हैलो इन करे असांजी कोशिशि इहा रहंदी आहे त पेशंट जेको असां वटि अचे पियो न उनजी चेकअप थिए, चेकअप में इहा सभु शयूं असां पंहिंजे ज़हननि में रखंदा आहियूं, इहा सभु शयूं असांजे ज़हन में हूंदी आहे त पेशंट जी जेका तकलीफ़ आहे, जेको मर्ज़ु आहे उन जी शुरूआति किथां थिए पई, मर्ज़ु आयो किथां, त उन सां पेशंट खे सम्झायो वञे त बाबा इन्हनि तकलीफ़ अचण जी वजह थी वई आहे तव्हांजो जेको खाधो पीतो आहे रुटीन सां कर। अच्छा खाधो पीतो चई चई मां लाइ केतिरा दफ़ा चई वियो आहे, पर इनखे सम्झाइण जे लाइ त सुबुह जी मानी, मंझंदि जी मानी, शाम जी मानी ऐं मानी खे वरी हज़म करिणो ऐं इन जे विच में जेका असां शयूं इस्तेमालु करे वेंदा आहियूं इन्हनि शयुनि ते अव्हांखे ग़ौर करिणो आहे। अव्हांखे पंहिंजे माइदे खे टाइम पीरियड ॾियणो आहे त पोइ जंहिंसां उहा खाधो पीतो हज़म करे ऐं अव्हांजो खाधो पीतो हज़म थींदो, माइदो अव्हांजो ठीकु थींदो, अव्हांखे तक़रीबन अधु बीमारियूं अव्हांजूं जेका जिस्म में हूंदियूं आहिनि उहा माइदे खां शुरू थींदियूं आहिनि, उहा अधु बीमारियूं अव्हांखे थींदियूं ई कोन। त अव्हां ॿाहिरि मुल्क में ॾिसो न, ॿाहिरि मुल्क में रुटीन आहे हर शइ जी त उन्हनि खे बीमारियूं बि घटि आहिनि, असां वटि त जेको आहे बाबा हल चाहियां थो प्यारी मुफ़्त जी चाहियां असां चढ़ी हलिया वेंदा आहियूं गाॾियुनि ते।
0: अच्छा सर, इहा तमामु बहितर ॻाल्हि। हाणे जेकॾहिं बीमारियुनि जी ॻाल्हि आई आहे त कुझु सवाल आहिनि जेके आम इंसान जे ज़हन में हूंदा आहिनि, त थकावट हर बीमारी जी निशानी आहे सर? अगरि जेकॾहिं कंहिं इंसान खे थकावट थिए थी त उहा कहिड़ी बीमारी जी निशानी आहे?
1: थकावट में हर बीमारी कोन ईंदी, हर बीमारी थकावट सां न आहे ऐं थकावट हर बीमारी सां कोन्हे का।
0: ठीकु
1: आहे, इन में थकावट जेका आहे मोटी मोटी जेका शयूं आहिनि जंहिंजे बारे में ॿुधायो वञा त शुगर वधियलु हुजे खुटियल हुजे थकावट जे समय महसूसु थींदी, ब्लड प्रेशर घटि वधीक न घटि थिए ओॾी महिल थकावट महसूसु थींदी, जिस्म में पाणी जी कमी थींदी थकावट महसूसु थींदी, RBS यानी कि जिस्म में ॻाढ़ा जुज़ा घटि थींदा थकावट थोरो कम करे सा भुलिजी वञनि, इहे सभु शयूं महसूसु थींदियूं, दिलि जा मसाला थींदा महसूसु थींदियूं, मादे जी बीमारी थींदी महसूसु थींदियूं, राति जी निंड जो घटि थियणु या थकावट माना थकावट सां इहा बीमारियुनि में शुमारु थी सघे थो।
0: तमामु बहितर सर, तमामु बहितर। पाणी घटि पीअण सां सर जिस्म जो असरु थींदो आहे?
1: पाणी घटि पीअण सां अव्हांजा गुर्दा उन्हनि ते असरु गुर्दनि ते असरु पवंदा आहिनि, छो त पाणी गुर्दनि खे लाज़मी खपे, माना मेन शइ आहे त गुर्दनि ते असरु, बाक़ी जेको पाणी घटि थियण करे अव्हांजे प्लेटलेट्स घटि थियनि था जिस्म में, अव्हांजे जिस्म में बगरजाम आयो पाणी न पीतो त नमकियात घटि थी सघे थी, पर मेन जेको आहे न किरदारु उहा गुर्दनि जो आहे, छो गुर्दा अव्हांजे रत जी सफ़ाई कंदा आहिनि, जेको रतु असांजो आहे हुन में जेका जरासीम आहिनि सेल जेका आहिनि ॻाढ़ा जुज़ा आहिनि उहा उन्हनि जी टाइम पीरियड थोरो हूंदो आहे त उहा ख़तमु थी वेंदा आहिनि, त उन्हनि खे जिस्म मां कढणु गुर्दनि जो कमु आहे, वॉश कंदा आहिनि भाई जेका शे उते पहुंची थी वने तो उने के साफ करे पानी जो हुंदो तो पेशाब इंदो तो हुआ जिस्म में बाहर निकल सके तो न तो कौन निकरंदो गुर्दन ते सोच थी पकंदी पूरी पेशाब में जलन
0: तमाम बेहतर सर ये हर बुखार में असा चंदा है बाबा हन जको बीमारी जलाई एंटीबायोटिक यूज करे छियो ही एंटीबायोटिक यूज करे छियो हर बीमारी में एंटीबायोटिक यूज करने सही है लाजमी है
1: सही एंटीबायोटिक अच्छा एंटीबायोटिक जो वर्ड है ना यो आए एलोपैथिक जो असा होम्योपैथिक जो एंटीबायोटिक सा कुछ न वने बुखार में तो उन्होंने हवाले से सिर्फ घनी गाल मुझे टॉपिक मुझी शे कान्ने बुखार में एंटीबायोटिक ओडी मल इस्तेमाल कबी आ जेडी मल जिस्म में का इन्फेक्शन हो जे पर वो हाँ उन्हें वह शे असा में एंटीबायोटिक का भी शे को असा में चाहे तो सिम्पटम चाहे पेशेंट चवे तो उनके तकलीफ़ कड़ी आड़ी जगह पर है केडी मल घट वे थी यह सब शूँ ऐसी असि होम्योपैथिक की मेडिसन्स होंदियों जो असा दींदा आयो
0: सही सर अच्छा सर ये ऐसो मौसम के हवा से भी कुछ आए तो हिंसर गर्मी भी तमाम घनी पी हले पे सिंध में चौवंजा बवंजा या पंजा सेंटीग्रेड तकरीबन हले पो तो मौसम के हवा से भी उन तब्दीली के हवा से भी मतलब मानुन के बीमारियों थन्दून या उन्हें तो बचा सकते सामने लाइव कॉल की तरफ हल्दी डॉक्टर साहब का इन सवाल जवाब लाइव कॉल का पे था पुछू अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम
2: हेलो केर किथा
0: गादा
2: हेलो
1: अदा केर गलायो
0: डॉक्टर साहब लाइन देनो डॉक्टर साहब ना गलायो
1: असा जला छा सवाल आहे जी साईं आवाज अचे पियो असा जो
2: जी जी अचे रहा
1: हां साईं केड़ो सवाल है असा जला आवाज सही तो सफा घट पे अच्छे थोड़ा तेज कंदा मेहरबानी
2: हाना जदा सा
1: जी जी हाने फदायो
2: हां मां जदा वार करन था ए जो मत वार इन हेलो
3: अपना हो पांडो जदा
2: हाना अच्छा हेलो
1: जी
2: हां आप आगे तो
1: हाने आवाज अच्छे पे
2: हां मां जा तो वार होने था मतलब वार इन
1: सही ठीक अवां जो सवाल हो तो वार किरन पे वार छड़न पे अच्छा वार छड़न पे ही सही तो वो बेहतरीन सवाल है असाज ला वार छड़न वार किरन सही असाज में होम्योपैथिक में वार किरन जो जो ऑप्शन है ना उनमें कुछ शूँ अड़ियन जैमें असा के दिसनी पवंदन असा कोशिश कंदा आयो तो पैरी थन्द असा टेस्ट ठीक है उन टेस्ट में कुछ को एतरो को वो को टेस्ट को रत कढ़ो या अवे का तकलीफ़ में वो धक्का न न सिर्फ नॉर्मल टेस्ट है उन टेस्ट में यह खबर पे तो अवे वार में कमी छाजो यानी कि अवा जिसम में जो वार मथे जो वार वह छड़न पाया तो उनमें वजह असल में है कम चाहे छो कर पाया वह शी कर तेल शैम्पू उनके लगने के तरीक़ेकार समझाइंदा इन कर अवजा वार छड़न पे किरन पे तो उन्होंने अवा के अचो पवे टेस्ट कराना पव
0: सामने लाइव कॉल की तरफ हल्दी तो केर असा गडन अस्सलाम वालेकुम
4: वालेकुम सलाम बवा
0: जी अदा केर किथा का जी जी अदा कड़ो सवाल है डॉक्टर साहब जला साई ये सागो ही सवाल अमा का पेरा बेकड़ो पेशेंट जको ने कर चुको है डॉक्टर साहब ने जो जवाब जको है एफएम ते भी दे चुका है ने जसमिन कोशिश कियो तो एकड़ो सवाल जको के अमा लिसनर्स बुधी रहे आयो एफएम ते तो एकड़ो सवाल जको करे तो वरी दोबारा वो सवाल न कयो ने जी सर सर अवां खां लाइव कॉल खां पहिरां हिकु सवाल पुछो मौसम जी तब्दीली जे हवाले सां
1: जी मौसम जी तब्दीली जे हवाले सां जिस्म ते थियण वारी बीमारियूं अच्छा अच्छा बीमारियूं असांजी होम्योपैथिक में ब मेडिसन आहिनि हिकिड़ो आहे एकोनाइट हिकिड़ो आहे डिलकामारा ब मेडिसन जेको गर्मी खां सियारो थिए सियारे खां वरी गर्मी थिए इन ॿिन्हिनि मौसमनि में उन दवाउनि जा कम ऐं किरदारु थींदा आहिनि तो उन के लिए ये चवंद होम्योपैथिक में यह चैप्टर अलग असा पढ़ाया वो हाँ अस मतलब लेक्चरार थी तो असे स्टूडेंट के यही पढ़ाऊँ पाया सिखारूँ पाया तो जी मौसम मटजी वे तो उनमें का मेडिसन्स दवाओं जड़ियों कड़ी कड़ी मौसम की तब्दीली से जो सियारो चे पो तो जारी गल खंघ जुकाम लेस बुखार या शूं गर्मी इंदियन तो गर्मी लगने जहाँ चांस थी सकन था उन्हें जो इलाज होम्योपैथिक में मौजूद है।
0: जी सर सर सर आम तौर से कड़ी गलतियों क्या मरीज जी उन सेहत के नुकसान पहुँचाइंदा
1: आम तौर से जो गलतियों क्या मरीज
0: जी जी
1: मरीज तो सभी का पे गलती करे तो डॉक्टर का दवा वे तो असल में आम तौर से जो पेशेंट गलती कहन उन गलती में सभी का वही वही गलती थी बदपरेजी यानि कि एक गाल थी वही तो बीमार थी वासी दवा वरती थी उन बाद में यह गलती है तो बदपरहेज करे वरी बदपरहेज करे खाण पीण जो शूं जल्सी उ खाधी सी उन्हें अलावा गलती एक बी कर वेथा वन त दवा की जो टाइम पीरियड है उन्हें सा इस्तेमाल न कयोसी उन में गलती थी पी या गलती जो बीमारी के ख़त्म करण में असा टाइम लगे तो वे बाकी इन का अग में दिसूँ पाया तो असो मायदे की तकलीफ़ है तो अस खराब शूं खाऊँ पाया तो रही बीमार थन्दी न तो यह गलतियों तो वो पा कन पाया जैके असो शुरू में टॉपिक में असा बुधायोसी तो कुछ गलतियों असाजी बीन बीमारी के हवाले से तो लाइफ स्टाइल जो है वह चेंजिंग करनी पवी वही शूँ
0: सामी लाइव कॉल की तरफ हल्दी अस्सलाम वालेकुम साईं वालेकुम अस्सलाम के रहे किथा का
5: वासनी शाह का
0: जी दा केड़ो सवाल है डॉक्टर साहब जला
5: अरे यार अंब जी सीजन आ डॉक्टर साहब को पूछा कयो अंब खाए जे नुकसान कर तो कोने न सुबह जो मन सा काम सा रात जो मंजन जो खासे नुकसान कर तो कोने न
0: ठीक है जी ठीक है आ के डॉक्टर साहब एफएम के जरिए आवाज जनता जी सर
1: सही अंब खाने का बाद में जिस्म के मथा पित्त निकरंदी आहे दाणा निकरंदा हन पानी वारा उन के कर अंब थोड़ा गर्म निकरे थी जिस्म ते अव अंब खाओ उन बाद में लस्सी पी वो या शिकरंदी अच्छा इन शी शहन में वरी अची वही तो यह अंब खाइन था ना खाइन तो जिस्म के मथा सना सना ना दाणा थन था इन गर्मियों में तो उन गर्मी में दाणन में पानी निकरे तो अस खारिज क्यों था तो उन रंदे का पंद वी थी वीथा वन खास कर रात के टाइम से उन्हें में परेशान थे जरूरत कान्ने का दवा वठने की भी का जरूरत कान्ने का इन शे में परेशान न थो निम पटे पानी में गर्म करे उनमें थदो पानी मिलाए उन्हें सा विजारे छो विझी पो उन बाद में थदो पाउडर मिले तो वह इस्तेमाल करे वो जे वह शे इस्तेमाल ना कर तो जो गोठन में माइयों खाइंदी न मेट मेट पानी में पोसाए सजे जिसम के वह लगे छो मेट सुक या दाणा फाड़ी उन पानी निकर मेट चूसे वी तो हि दाणा वधंदा भी को जो दाणा आन से उ खत्म थी पवंदा तो यह कम किरदार एक शे है जो अवं कर सको इन दाणन के हवाले से दाणा गर्मी में भी थी सकन था अंब खाण का थी सकन था अंब खाण का थे तो लस्सी जो इस्तेमाल जरूर कजो।
0: जी सर सर कुछ सवाल भी बया काफ़ी पर आस्ते आस्ते उन मरल हल्दे हल्दा हल्दी कड़ी वह बीमारी है सर जो शुरुआत में तो असा मामूली लगनी है पर बाद में असाजी सेहत के लिए वह खतरनाक साबित थी सके थी
1: सही अवं सा पूरे नए वगे ती बल आया जितना सवाल किया जवाब दींदुस
0: जी सर
1: हिंसा अव सवाल है कड़ी अड़ी बीमारी जो दिसण में आम नंढी या अस इन बीमारी के बारे में सोचू को तो उ बीमारी कुछ वक्त का बाद में वही थी
0: खतरनाक साबित थी सके थी
1: इनमें सवाल में बीमारियों जो मेन बाकी बीमारी आ तो वह देर से समझ में अचे थी
0: जी
1: मायदो सभी का पे अस गोठ का शहर वी समोसा पकौड़ा खादासी देगारा चावर खादासी असा के पेट से भर्ती महसूस थी असा के पेट में हिं में सूर महसूस थो अस को बोतल या चाह पी उन शे के खत्म कयसी मामूली हुई मामूली शे के समझी असा खत्म कियासी अगते हली यह सागे शे भर्ती गैस कब्जी चलन इन सभी शे मिलाए करे मादे से जख्म करे थी वे एक आम गाल भी आए जुकाम चुकाम असके लगी वो अस उनको इलाज ना क्यों आस्ते आस्ते मगज़ में गाढ़ो पो वरी मथे में सूर चालू थी तो वे यह आम थी वही बी आम है तो पेशाब में जलन थे थी अस उनके लिख्य को गुर्दे में पथरी गुर्दे में सोज गुर्दे में इन्फेक्शन गुर्दे में किचरो मसाने ते सोज मसाने की कमजोरी यह शूँ थी वेंद आम बीमारियों पर इन वरी बीमारी थी वेंद इन मुताबिक बिहार भी सही पर असो सवाल तवरी जो जवाब दी वा तो आम बीमारी बुधा बुधा प्रोग्राम खत्म कर वेंदुस
0: न सर सही है पा असान सामने के इन शे के बारे में आगाही मिली सर सामने लाइव कॉली तरफ हल्दी सवाल पुछण पर लाइव कॉली तरफ हलूँ जी दा कड़ो सवाल है डॉक्टर साहब का अदा भले गल कड़ो सवाल था पुछो डॉक्टर साहब का ठीक है सही ठीक है ठीक है ठीक है जी सर बुत में बात ही निकल आ देगी
1: सही हाँ में गरमाइश उन्हें का बाद में बुत में गरमाइश निकरण तो इन जो मुराद यो है तो मायदो जिगर बई अवाजा गरमाइश में थी चुका उन बिन्हीं जो इलाज थो वही अवी तबियत में थदकार महसूस थी जितो जल्दी कराइंद आम जे ला बेहतर है जे न कराइंद हेपाटाइटस मायदे जो जख्म फिकी साही यह तकलीफू थी सकन थी जिगर के मथा चर्बी यह शूं अव जी इन सवाल हो नादिर साहब जो आम बीमारी तो हि आम थी वही इन का अगत यह व्यू तकलीफू थी व्यू
0: सामने लाइव कॉल की तरफ हल्दी लेकिन कॉल डिस्कनेक्ट थी चुकी है सर अगर जो अमां इजाज़त दियो तवां का कुछ सवाल पूछा
1: हाँ बिस्मिल्लाह
0: सर वर्जिश करण जो है वो सेहत के लिए बेहतर है पर उन वक्त जो होजन जरूरी है मतलब वो वक्त की कैद है तो कड़े टाइम से कजेस
1: वर्जिश जिसम के लिए बेहतर है हाँ बिल्कुल बेहतर है उन जी टाइमिंग टाइमिंग है सुबह जो शाम जो सिज लथे का पो सुबह सण मन सिज न हो उन टाइम से एक्सरसाइज अवाज बेहतर है सिज अची वो अवाज एक्सरसाइज कर अजाब मन अवा एक्सरसाइज कौ पाँच नियत मुताबिक तो एक्सरसाइज क्या पो पर हुआ अवाज सेहत के लिए नुकसानदेह है
0: तमाम सर बेहतर सर निंड की खोट जिसमें दिमाग से असर कन थी
1: दिल दिमाग
0: जिसम ही दिमाग
1: निंड
0: की खोट
1: अच्छा निंड की खोट थी ओडी मल जेडी मल दिमाग अवां जो सेट थिंदो ही कोन सोच गणतियों परेशानियों जमा कंदा हो डिप्रेशन जमा कंदा हो एंजाइटी जमा कंदा हो खौफ जमा कंदा हो उन का अलावा दिमागी कमजोरी जेडी मल थी तो निंड ऑटोमेटिक अवां जी गुम थी पवंदी उन बाद में जिसम ते असारा जरूर थींदा अखियों अंदर थी पवंदियों अखियों के हेठ निशान अची पवंदा कारा कारा अखियों गाढ़ी थी पवंदियों जिसम कमजोर सुस्त हीणो अड़े मुताबिक पैदा थे महसूस थे शुरू थी पवंद
0: जी सर तमाम बेहतरीन सर ये बेचैनी स्ट्रेस वगैरह जो हिंसर अजकल जो नौजवान में वही रो है इन जो मेन सबब कड़ा आखिर
1: स्ट्रेस मतलब स्ट्रेस डिप्रेशन एंजाइटी ये सब शूँ मिक्स कर छो नौजवान में अच्छा नौजवान में सभी का पैं कुछ कैटेगरी क्यों तो बेहतर रो समझाने में
0: जी सर
1: सभी का पैं कैटेगरी है स्टूडेंट उनमें तकरीबन मैट्रिक इंटर यूनिवर्सिटीज यूनिवर्सिटी का बाद में जॉब्स जला या आम मानू जेका बेरोजगार रोजगार के हवाले से या को रोजगार तरफ वजे तो का जॉब्स ला वे पो या उन अलावा मानू जो खेती बाड़ी माना ये काश्तकार कन पाया हार पो कन पाया उन्हें तरफ आम मानू जी रोजगार कारोबार की तरफ सही हाँ सभी में एक शे मेन थी वही तो स्ट्रेस असि होम्योपैथिक वा न इतने वाली परेशान थी था वन छो तो असा सभी का मिक्स कर सवाल जो जवाब दें पो पर होम्योपैथिक में यूनिवर्सिटी वाले अलग मेडिसन कारोबार वाले अलग मेडिसन जेका बनी पार्क वा उन्होंने अलग मेडिसन थी उन अलावा जो घरेलू स्ट्रेस हूँ परेशानी उन मेडिसन अस होम्योपैथिक में अलग थी थी तो हि अलग अलग मेडिसन इन कर तकलीफ जैसे ला थे पो उन्हीं ही जी दवा उन्हीं पेशेंट के मिले तो यहाँ दवाओं सिर्फ होम्योपैथिक में अवेलेबल आन बे कें वट आन ही को शे ध्यान में रहे बाक़ी छा कंदा अवां खे निंड जी गोरी ॾींदा, असां में निंड जी गोरी ॾियणु हराम आहे होम्योपैथिक में। असां में चवंदासीं त हीअ अलॻि अलॻि तव्हांखे करे ॾिनो न, अलॻि अलॻि दवाऊं तव्हांखे ॾिनियूंसीं न, त पेशंट जी जहिड़ी दवा जी नीड आहे उनखे उहा दवा ॾियो, उहा शइ ख़तमु थिए, ऑटोमेटिक निंड अची पवंदी। त इन शइ जे करे ई त मूंखे होम्योपैथिक पसंदि आहे। हिकिड़ो त इंजेक्शन कोन्हे को, छो त पेशंट जेको रोईंदो मुंहुं अचे पियो, मां इंजेक्शन लॻाए अञा रोआरियां, त हिकिड़ी त इहा शइ कान्हे का जंहिंजे करे मूंखे होम्योपैथिक पसंदि आहे। बाक़ी इहो आहे त इन में इलाज उहा शइ कबी त जंहिंजी ज़रूरत आहे पेशंट खे। हर भेरो कंहिं बि दवाउनि जे या कंहिं ॿिए डोज़नि जी ॾेई छॾूं पिण इथई थी पवंदो पाणे, त उहा शइ इन में कान्हे का। हुन में इन में मतिलबु की डीप एतिरो आहे, जेतिरो अवां अंदरि इन में हलंदा वेंदा अव्हांखे मज़ो ईंदो रहंदो होम्योपैथिक में। त इन करे होम्योपैथिक असांखे घणी पसंदि आहे। बाक़ी अव्हांजो जेको सवाल जो जवाबु हो स्ट्रेस, ॾिसो होम्योपैथिक में स्ट्रेस खे अलॻि अलॻि डिवाइड कयो, जीअं मां अव्हांखे अलॻि अलॻि ॿुधायां थो, हुनजी दवा अलॻि, हुनजी अलॻि, हुनजी अलॻि। हाणे स्ट्रेस थियण जी वजहात यूनिवर्सिटी वारा जेका आहिनि उन्हनि में स्ट्रेस जी वजूहात आहिनि, एजुकेशन जे हवाले सां इम्तिहान अचनि पिया उन जे हवाले सां, या क्लास में आहिनि उन्हनि जे हवाले सां स्ट्रेस थी सघे थो, उनजी मेडिसन अलॻि आहे। ऐं उन खां अलावा जेके नौजवान आहिनि उन्हनि में स्ट्रेस ईअं थी सघे थो त कारोबार खे कहिड़ो कारोबार कयां, कहिड़ो कारोबार कयां, ऐं कारोबार खां जेको करनि पिया त उहा वधनि न पिया, उनजे लाइ स्ट्रेस परेशानी ज़रूरु हूंदी आहे। पर जेतिरा ई स्ट्रेस कंदा परेशानी कंदा त उहा शइ उहा कॾहिं बि कामयाबु न थींदा, भले उहा कारोबार हुजे, भले उहा स्टूडेंट्स हुजनि, भले उहा बनी बार वारा हुजनि या घरेलू मामलात हुजनि। कॾहिं बि जेॾी महिल अवां स्ट्रेस खे तव्हां हटी करे सोचींदा न, अवां हर मामलात में 100% थी पवंदा। स्ट्रेस सां गॾु सोचींदा त सम्झो तव्हां 10% आहियो इन मामलात में। सोच गणतियूं परेशानी खे पासे में रखी करे पोइ सोचींदा कयो, तव्हांजा जेका मसला आहिनि उहे ऑटोमेटिक हल थियणु शुरू थी वेंदा। बाक़ी अलाह जो नालो वठो, हर स्ट्रेस गुम पाणे पाण।
0: सर तमामु बहितरीन। सर अव्हांखे बि माशाल्लाह काफ़ी अरसो थियो आहे होम्योपैथिक डॉक्टर जो फर्ज़ सर अंजाम ॾींदे।
6: जी
0: जॾहिं कंहिं मरीज़ जी हालति बहितर थींदे ॾिसंदा आहियो, तव्हांखे को अहिड़ो अहसासु थींदो आहे जंहिंखां अव्हांखे ख़ुशी थींदी हुजे?
1: हा हा बिल्कुलु। ऐं मुंहिंजो प्रोग्राम थियो हो त हुन प्रोग्राम में, हा नी न, हींअर नई नई ॻाल्हि आहे
0: जी,
1: त उन में प्रोग्राम में बि हिकिड़ो पेशंट हो, हुनजो नालो काल आई त काल कंदे कंदे नालो खणंदे खणंदे उनजी वीचारी FM ते क्लिनिक ते ॾाढी थी वई। उहो पेशंट अहिड़ो हो त सम्झो असांजी होम्योपैथिक ई उनखे बचाए वई, मूं न बचायो, होम्योपैथिक जी दवाउनि सां उहो बची वियो। उनखे हिकिड़ी बीमारियूं कोन हुयूं, खोड़ बीमारियूं हुयूं, पर ईअं हुयूं त माइदो ख़राबु थियो त हुन खां पोइ माइदे जे करे जिगर ख़राबु थी वियो, जिगर जे करे गुर्दनि ते असरु थी वियो, गुर्दनि जे करे ब्लड प्रेशर ते असरु थी वियो, ब्लड प्रेशर करे निंड ख़राबु थी वई। ऐं इन्हनि सभिनी जे करे पेर में सोज, हथनि में सोज, बूथ ते सोज, हलणु फिरणु कमकार ख़तमु। ऐं होम्योपैथिक छा कयो त शुरूआति कई माइदे खां, ऑटोमेटिक या जिगर विगर सभु शयूं सही थी विया, पेशंट ख़ुशहाल थी वियो। ऐं आख़िरि में चई त मां तयारु थींदुसि, मिठाई ॾींदुसि, वरी मिठाई ॾींदी कान, गुम थी वियो, FM ते बि विस्तो कयोसीं, पोइ मूं कोन थो मञे उहो तव्हांजो मंगसी।
0: तमामु बहितरु सर, तमामु बहितरु। अगरि कंहिं मरीज़ खे, इहो बि सर सवाल तव्हांजे लाइ, तव्हांजे तजुर्बे जे मुताबिक़ आहे
6: जी,
0: त तव्हांजे केरियर जो सभ खां ॾुखियो लम्हो कहिड़ो हुयो जेको अव्हांखे अॼु ताईं यादि हुजे?
1: पेशंट मूं वटि ॿ हुआ
0: जी जी,
1: ॿई लेडीज़ हुयूं,
0: ऐं
1: हिकिड़ी हुई नॉन मुस्लिम हुआ, नालो हींअर ज़हन में नथो अचे
0: जी सर,
1: नॉन मुस्लिम हुआ, चकरनि जा हुआ। ऐं हिते जा पाण FM ग्राम वेंदा आहियूं हिते शाख कॉलेज, कॉलेज जेको आहे हिते जी हुई लेडीज़, ॿी हुई खानदाद मुल जी, ॿ लेडीज़ हुयूं, ॿई वफ़ात थी वियूं। उन में छा थियो त हिकिड़ी लेडीज़ हुई, उनखे असां ते, असांजी होम्योपैथिक ते असांजे एतिरो यकीन हो त हुन कैंसर, उनखे हो ब्रेस्ट कैंसर, त उन ब्रेस्ट कैंसर जी का बि सूर थिए, तकलीफ़ थिए, का बि शइ थिए त दवा वठणी असां खां, बाक़ी किथां बि दवा नाहे वठणी। मूं एतिरो कर रेफर कयोमांसि नोरिन सेंटर, पर होॾां वई दवा कोन वरिती, मोटी आई चए मूंखे मारी त धूम मार, बाक़ी मां दवा किथां न वठंदुसि। माना एतिरो असांजी होम्योपैथिक ते ऐं असां ते यकीन हो। ॾाढी कोशिशि कयोसीं माशाल्लाह, केॾीमहिल सफ़ा ख़ुशि त केॾीमहिल सफ़ा ख़तमु, इहा शयूं हुयूं। उन खां अलावा बि लेडीज़ हुई त हू बि नंढी उमिरि खां पेरु ख़तमु थियलु हुनजो, त हुन जो बि इलाज कयूं पिया उहो फ्री ऑफ कॉस्ट हो, मतिलबु हुन जा पैसा कोन वठंदा हुआसीं, जेको ॾेई वई सो ठीकु आहे, न ॾेई वई ख़ैरु आहे। ॿिन्हिनि सां असांजो इहो ई कमु हो त बाबा दवा ख़तमु न थिए, ख़तमु थियण खां अॻु में अचो, पैसनि खे विसारे छॾियो, हुजनि त ॾेई वञिजो, न हुजनि त बख़्शियासीं। त इहे ॿई केस असांजे लाइ ॾाढा ॾुखिया हुआ ऐं ॿई वफ़ात थी वियूं, पर काफ़ी बहितर थी वई, पर शायदि ज़िंदगी ख़तमु थी वई। इलाज कयोसीं त उन में असां पाण तजुर्बो वरितो हो ऐं उनजो इलाज सां काफ़ी बहितर, एतिरा क़दुरु पेशेंट ठीकु थी विया त उन्हनि जा घर वारा ॿिया टे मरीज़ूं वठी अस केस वठी असां वटि अची रहिया हुआ। त माना उहो ॾिसनि पिया त हीअ माई खट ते पई हुई, हाणे उथी हले फिरे खाइण पीअण जहिड़ी थी चुकी आहे। बाक़ी असां ॿिन्हिनि खे इहो चई त ॾिसो, दवा सां कॾहिं बि तव्हां तयारु न थी सघंदा छो त हीअ पंहिंजे अंदरि पाड़ करे वेठी आहे। असांजी कोशिशि इहा रहंदी त इनजी पाड़ सुके सुके ख़तमु थिए त मथां पंहिंजे पाण गुम थी पवंदो। बाक़ी असां इन खे मथां ज़ख़्मनि खे ख़तमु कंदासूं, हेठां सावारंदा, कुझु वक़्त खां पोइ वरी फाटंदा, वरी पाणी कंदा, गंद कंदा, अव्हांजी जंग खे कमज़ोरु कंदा, हॾनि खे कमज़ोरु कंदा। त इन करे जेको गंद निकिरे पियो निकिरनि ॾियोसि, मथां भले कुल हुजे, अंदरां सुकाईंदासीं उहो जान छुटंदी। त उन्हनि केसनि में असां लॻा पिया हुआसीं।
0: माशाल्लाह सर, तमामु बहितर सर। अव्हांजो जेको डॉक्टरी जो शोभो आहे उन में अव्हांखे तक़रीबन 30 साल थी चुका आहिनि
1: प्रैक्टिस कंदे कंदे।
0: जी जी,
1: न 30 साल कोन थिया आहिनि प्रैक्टिस कंदे कंदे, मूंखे थी विया आहिनि 17 साल।
0: 17 साल
1: थी विया
0: सर। 17 सालनि मां अव्हां मां यकीननि कुझु अहिड़ा माण्हू हूंदा जेके अव्हां जे ॻाल्हियुनि मां अव्हां जे किरदार मां घणो कुझु सिखिया हूंदा।
1: न बिल्कुलु, इहा शइ मुंहिंजी कान्हे का। ॾिसो, मां FM ते वेठो आहियां त जेका इल्मु मूं वटि आहे मां FM ते ई ॾियां पियो। जेका ॿुधनि पिया त उहो सभु डॉक्टर थियनि पिया।
0: जी सर, मां बि इहा ॻाल्हि थो कयां त उन 17 सालनि जे अरसे में, या हीअ जेको हींअर तव्हां क्लिनिक पंहिंजी ऑन कई आहे उन जे हवाले सां काफ़ी मरीज़ अव्हां मां सिखी चुका हूंदा। को अहिड़ो मरीज़ जंहिंमां अव्हां का ॻाल्हि सिखिया हुजो?
1: अच्छा,
0: मुतासिर थिया हुजो
1: पेशंट जे मां मुतासिर थियो हुजां?
0: जी जी,
1: बाक़ी मूं वटि जेका मूं वटि जेका शागिर्द हुआ, अॼु माशाला सभई डॉक्टर प्रोफेसर आहिनि, सभई
0: माशाला
1: असांखां वॾा वॾा डॉक्टर थी विया आहिनि। असांखे चवंदा साईं हिते अचो क्लिनिक हलायो, हिते पेशंट जाम आहिनि। असां चयो तव्हांजी रोज़ी आहे, अलाह तव्हांखे रोज़ी ॾिनी आहे, तव्हां कमायो खाओ पीओ पंहिंजा ॿार बचा कयो, पर हक़ हलाल ते रहिजो, हराम ॾे आयो त मां लठ खणी अची पवंदुसि।
0: जी सर, माशाला अलाह पाक अव्हांखे ॾात बि अहिड़ी ॾिनी आहे, अव्हांजो किरदारु अव्हांजो रवैयो उहो सभु असांखे ख़बर आहे, पर असांजे सामान खे बि ख़बर आहे तव्हां कहिड़े किरदार जा मालिक आहियो। जी सर,
1: जेको पेशंट कुझु पेशंट जेका आया आहिनि ऐं भई सुवाल हो त पेशंट आया ऐं उन्हनि मां कुझु सिखियो हुजां।
0: जी जी सर,
1: यार अहिड़ा केस त मूं वटि तक़रीबन न आहिनि, न हूंदा आहिनि, छो त मां छा कंदो आहियां त का बि केस अहिड़ा मूं ॾींदा न, जीअं मां FM ते बि चवंदा हुआ न ईंदो त मां गस ॾींदो आहियां, त उन में मां असल किरदार मां छा कमु छा कंदो आहियां त पेशंट मूं वटि जेको बि आयो न उनजो इलाजु मूं वटि न आहे, चेकअप मां ज़रूरु कंदो आहियां, उनजी जेका अलामत हुन निशानियूं आहिनि बीमारियूं आहिनि टेस्टूं रिपोर्टूं सभु शइ मां ॾिसंदो ज़रूरु आहियां। पाण वटि परचेस में उनजो नालो लिखी उमिरि लिखी ऐं तारीख़ हणी उनजी जेका तकलीफ़ूं आहिनि सभु मर्ज़ मां पाण वटि लिखंदो आहियां। उन सां फ़ाइदो इहो थींदो आहे त इंसानु आहियूं, हर को पूरो मुकमल कॾहिं बि कोन्हे को, हर कंहिंमें कमी ज़रूरु आहे, त इन करे असांजी जेका कमी आहे न उहा असांजे साम्हूं अची वई, उन लाइ पेशंट अची वियो असांजे साम्हूं, इहा मुंहिंजी कमी हुई त मुंहिंजे साम्हूं अची, हाणे मूंखे इन कमीअ खे पूरो करिणो आहे। त उनजे लाइ मुंहिंजो वॾो भाउ आहे जेको सम्झो आहे मूंखां वॾो बि ऐं डॉक्टरी फील्ड में बि मूंखां वॾो आहे, त मां हू सॼो केस खणी उन जे अॻियां रखी थो छॾियां, बाबा इन मुताबिक़ ॿुधा हाणे हिनजो करिणो छा आहे। पोइ उहा सभई मूंखे हिन ॻाल्हियुनि में सम्झाए छॾंदो आहे त हिनजी इहा टेस्टूं करायो, उन टेस्टनि सां हीअ शयूं जेका शयूं साम्हूं ज़ाहिर थींदियूं ऐं इहा सभु शयूं मिलाए करे जेका मेडिसन दवाऊं ठहंदियूं आहिनि उहा पेशंट खे ॾियो, पर थोरे टाइम लाइ ॾिजो, उन खां पोइ वरी वापसी घुराइजो ऐं 15 ॾींहं दवा हलाए करे पोइ वरी साॻी इहा टेस्टूं रिपीट कराइजो, त हुन टेस्टनि में ऐं पहिरें टेस्टनि में छा फ़र्क़ु आहे उहा शइ ॾिसी करे अव्हांजे पेशंट जो ट्रीटमेंट कयो। माना अहिड़े तरीक़े सां मां पेशंट खां सिखंदो न आहियां, पर पेशंट मां पाण जमा ज़रूरु कंदो आहियां त जंहिंसां ख़बर पए त मुंहिंजी जेको इलाजु हले पियो उन में कहिड़ी कहिड़ी शयुनि जी कमी आहे, उहा मां पाण वॾे भाउ खां, छो त हाणे वॾो भाउ मुंहिंजो बाबू आहे, त उन खां ई मां इन्हनि शयुनि खे सिखंदो रहंदो आहियां।
0: सर तमामु बहितरीन सर, अव्हांजी नज़र में ख़ुशि रहणु बहितरु आहे या सिहतमंद रहणु बहितर आहे? बहितरु आहे
1: ख़ुशि रहणु ऐं सिहतमंद रहनि, भई भेण ऐं भाइरनि।
0: जी सर,
1: भई भेण ऐं भाइरनि, अव्हांजी सिहत ख़ुशि हूंदी त उहा ख़ुशि थी विया हूंदा पाण, अव्हांजी सिहत ख़राबु हूंदी अव्हां पाण रोईंदव। صحت ہوندی تو اواں خوش ہوندا من صحت اواں جی خوش ہے تواں سوال جو جواب پانی تھی ہو
0: جی سر
1: صحت خوش ہے تو خوش ہے اواں بھی خوش ہے صحت بھی خوش ہے اواں خوش نہ ہو تو اواں جی صحت بھی خوش نہ تھیندی صحت بھلے ہوجے نہ ہوجے
0: جی سامن سوالن جوابن جو سلسلہ پورے 9 بجے تائیں جاری رہندو ڈاکٹر صاحب اسا گڈ پورے 9 بجے تائیں لائیو اسٹوڈیو میں موجود ہیں اواں ڈاکٹر صاحب کھا پنجی طبیعت دے حوالے سان صحت دے حوالے سان معلومات وٹھی سکو تھا ڈاکٹر صاحب جو لائیو کال نمبر ہے 0327-99-84-763 سامن پروگرام جو آخری مرحلے میں داخل تھی چکا ہوں ڈاکٹر صاحب کھا کچھ رہل سوال ہیں وہ بھی پوچھا کندا سی تے ڈاکٹر صاحب ईंदड़ नस्ल के सेहतमंद बनाने के लिए वालदेन के केड़ी सलाह दींदा
1: ईंदड़ नस्ल के सेहतमंद बनाने ला वालदेन के छा अच्छा जी, जी। सवाल त हने अवां कयो आहे त इने का बाद में को सवाल आहे
0: जी सर इन का बाद में सिर्फ एकड़ो ही सवाल आहे
1: जो पेरी वो कयो छ त ही सवाल जो जवाब माशाल्लाह मा सजो 10 मिनट खाई दो
0: अच्छा आखरी सवाल यो आहे त अवां सेहतमंद रहण जे लिए अगर जे असन जे सामने के टे सुठियो सलाह हो जो तो वे केड़ी हो जो
1: खादो टाइम पे खाण پانی ضرور پین خوش رہنے کی کوشش کن صحت چھا بیماری گم تھی پوندی
0: ماشاءاللہ سر یہ تو یکدم تا ان سوال میں یکدم جان چھڈائی ہن سوال جو کرے
1: ان سوال جو جواب نہ دو
0: صحیح اچھا سر ہاں اسا کے بتایو تو ایندڑ نسل کے صحت مند بنانے دے والدین کیڑی صلاح دیندا والدین کے
1: اچھا ایندڑ نسل کے صحت مند اچھا ان میں سوال میں
0: اکثر ڈٹھو یاد سر کہ بار اڑا ہوندے جے کہ کمزور پیدا تھیندا ہیں
1: کمزور پیدا تھیندا ہتے ہی ماں جاں انے پاسے میں پیری اچاں میں پوری بے پاسے
0: جی سر جی جی
1: اما ماں پی والدین انن جو سبن کا پیری فرض ہے تا اواں پانجے پان کے پیری دسو گالیوں کچھ عجیبن پر بدھن جلا بہترن ان میں چاہے تو کچھ مہو کھلندا کچھ روئندا ضرور پر گالیوں اواں جلا ضروری
0: فائدہ مند ہے
1: نوٹ کندا تو اج نہ تو سبھان اواں کے گال مجھے سمجھ میں ضروری دی والدین پانجے پان کے ضرور دسن ماں پی پانجے پان کے ضرور دسن تا کمی کے میں آ کمی مرادیو نہ ہے تو جی چوندا ہیں تو مردن میں جراثیم گھٹن نہ یہ شے ان طرف ماں ونجے ہی نہ تو ماں ونجا تو بے پاسے تو والد پانچ بابو جو وہ پان ڈسے تو ماں کی آیا مجھے گھر میں رویو کی سبن کا پہ شے وہ شے نوٹ کن گھر والا وہ یہ دسن تو گھر جو ماحول کی آ گھر میں ماحول کہڑے حساب سے خراب ہے تو مان کے صحیح کیا جا شے مجھے رکھنی ہے وہ شے رکھا بشوں یا اماں جا والدین ان جو کم ہے ہاں ہے کمزوری والدین میں ماں ہے ان میں سبن کا پہ کیلشیم مانا کیلشیم کی کمی रत की कमी उन अलावा मल्टी विटामिन्स यह टे शालदे वालद वालदा में अम्मा में जे घट है तो पे उन शूरी कर बार थे तरफ वन यह शिजन में है वालिद में चाहे तो का बीमारी है जी का शुगर टीबी साई नमूनियो या शन तो उन्होंने इलाज खत्म कर औलाद की तरफ वन इन से फायद ये तो ईंदड़ नसल में बीमारियों न मुंतकिल छो तो जेनेटिक्स न जेनेटिक्स मुराद जो बार पैदा थी तो माँ पिणस में बाबे माँ जी तकलीफ़ थन्द खी इंद दुनिया में मिलाप का पो या शूँ खी जरूर इंदा उनमें नसीब आ वाल घर अम्मा माँ बीमारी वी अचे या बाबे वाली बीमारी वी बिन्हीं में किन एक खी जरूर इंदो उनमें जब अस यह शू नोट कंदी तो असा बार जी चुका बार जी वह पेट में महीनों ब महीना टे वन तो उन बार में औरत में जो घरवारी है उनमें कैल्शियम पूरा आ तो बार सेहतमंद थो रत पूरा आ तो बार पठान वगुर गोरो चिटो गाढ़ो थो जो उनमें विटामिन्स पूरा आन तो पैदा थियण का कें डॉक्टर वट वजन की जरूरत न पवी इ शूँ जहन में पैदा थन्द धंध भी निकरंदा हलण भी थो पाडो थो पाडो माना बिल्ली जो बच्चो ना खास कर यह अल्फाज खो आया बिल्ली जो बच्चो आई में है रहा को रत न को पानी न को पैदा कर बिल्ली जो बच्चो पैदा कर दी इन का बेहतर आ तो कुछ वक्फो किया ब साल साल ब साल वक्फो किया बनी अवी जी जडी आ उनमें तुम कोई यूरिया वीझो आ यूरिया मुराद यो ही तो फ्रूट खरा हुआ मखण खरा हुआ कुछ लस्सी खरा हुआ कुछ ताकतदार शूँ खरा हुआ पो बार पैदा किया तो कुछ अस डॉक्टर का तो जान छुटे आ माना ये खास कर पेशेंट नंढा बार जो उन्होंने मुझे यो जड़ो जरूर होंगे तो उ गाल एफ एम से क्या पो तो यह शे नोट कर हाँ बार पैदा थे तो कमजोर आ कमजोर इन कर घरवारी आ कमजोर आ उनके ताकत वाली शूँ दियो बार थी आ तो खास कर चौथे महीने का छह महीने तीन जो टाइम पीरियड आ इनमें घर वाले के ताकत की दवाओं जरूर खपन छो तो बार इन टाइम में पाँगी पान के वो कर शुरू कह रत ठाण शुरू कर शे मतलब के काबू उन पूरी शूं खपन रत पानी जूस हर शे उनके खपे तो जैसा वो पाँच पान के एतो सेहतमंद करें तो अचण मल उन का तकलीफ़ न थे नॉर्मल डिलीवरी से ऑपरेशन का भी बचे तो यह शूँ जहन में रहन इन का बार जो थन्दान वह बीमारी का बचंदन सेहतिया भी थन्दान कुछ बार जो पैदा थे गुजारे भी वेंदान वह सब कैटेगरी इन वजह से इन्हें गौर कियाद अच्छा एक गाल घरवारी मुझे उनके कम आया तो घर जो माहौल बार पैदा थी चुको उन बाद में उनके माहौल घर जो सुठो मिल तरबियत सुठी मिली तो अवान जो आखिरी में पीढ़ी में वह साथ दी घर जो माहौल खराब थो सुठो न हों तो वो आखिर में पाँच माई वी हल वो तो यह शे जरूर है खोड़ दिठान मूँ इन कर गाल मुझे वाता निकर पर निकर का अग में अवं जरूर चयी तो कुछ शूं मुझी अवं खराब लगंद पर इंदड़ दौड़ में अवं चुंद यार डॉक्टर उन टाइम से गाल सही चई तो यह शूं ख्याल रखो
0: सर तमाम बेहतरीन सवेन प्रोग्राम के आखिरी मरहल में दाखिल थी चुका हूँ आखिरी मरहल में डॉक्टर साहब का सवाल जवाब भी पा वरता आखिर में डॉक्टर साहब का पैगाम मुख्तसर लफ्जन में डॉक्टर साहब का पुछना सी तो असान सामने आखिरी पैगाम कड़ो दियन पसंद कर जी सर
1: आखिरी में पैगाम

0: होम्योपैथी क्लिनिक स्टेशन रोड जे बिल्कुल विच में आयो उतां खां हितां जिथां अचो विच में आयो पार करे घिटी कंहिंखे चवंदव अवां खे पाण पहुचाए छॾंदा त उते पहुची अवां अची सघो था होम्योपैथिक इलाज जे लाइ। होम्योपैथिक में को साइड इफेक्ट कोन्हे, को नुक़सान कोन्हे, छो त हीअ दवाऊं अवां जे जिस्म में मौजूदु कुदरती ताक़त वाइटल फोर्स उन खे स्ट्रॉन्ग कंदी आहे, उन खे ताक़त ॾींदी आहे। उहा ई ताक़त अवां जे जिस्म में बीमारियुनि खे ख़तमु करण जी कोशिशि कंदी आहे। असांजी जेका दवाऊं आहिनि उहा डायरेक्ट कंहिं बीमारी सां नथी विढ़े। असांजी दवाऊं होम्योपैथिक जो जेका दवाऊं आहिनि उहा सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु जिस्म में इम्यूनिटी सिस्टम कुवत मदाफ़त वारो सिस्टम जेको अलाह साईं असांजे जिस्म में रखियो आहे उन खे ताक़त ॾींदी आहे। उहा ई बीमारी सां विढ़े थी जंहिंजे करे असां चवंदा आहियूं त असां में नो साइड इफेक्ट माना को नुक़सान वारी शइ असां में न छो त कुदरत इलाज पंहिंजे पाण करे पई न। असां त रुगो हुनखे चवंदा उत उत शाबाश हल हल हल असां हुनखे इहो चऊं पिया हू पाण ई करे पई। जेको अलाह जो निज़ाम आहे उहो ई कमल थिए पियो, असांजो हुन में कुझु बि कोन्हे को। तॾहिं असां चवंदा आहियूं त साइड इफेक्ट कोन्हे को, नुक़सान कोन्हे को। असां पंहिंजो न पाण इलाज न पिया कयूं, कुदरत अवांजो पंहिंजे पाण इलाज करे पई। साइड इफेक्ट इन जे करे असांजी होम्योपैथिक में न आहे। ऐं उन खां अलावा असांजी जेका दवाऊं आहिनि उन्हनि जा रिज़ल्ट सुठा आहिनि। देरि सां कोन जल्दी अचनि था, पर कुझु घणियूं बीमारियूं त हुन में हर कंहिंखे देरि लॻे थी ऐं असांखे देरि बि लॻे थी। छो त ॿियनि खे लॻे थी हिकिड़ी बीमारी ख़तमु थिए, ॿिए थिए, टे थिए, पोइ वञी सेतियाबी थिए थी। त हुन में करे असांखे बि ईअं इलाज करण में वक़फ़ो लॻे थो, बाक़ी आम बीमारियुनि में असांखे बि वक़फ़ो नथो लॻे। आख़िर में जेका इम्यूनिटी मां चवां पियो ऐं कुवत मुदाफ़त चवां पियो जे इहा शइ ग़लति आहे ऐं इहो इलाज तरीक़ेकार ग़लति आहे त जिस्म में अव्हांजे जिस्म में अलाए केतिरा इम्यूनिटी सिस्टम अव्हां जिस्म में आई आहे कुदरती तरफ़ां न इंसान जी तरफ़ां। मिसाल पोलियो जी वैक्सीन अव्हांखे त कोन्हे को, तव्हां छो था पियो फोड़ा न पियो न, जंहिंखे थींदो ओॾीमहिल पीजो न। हरू भरू स्कूलनि वारा डंडो ॾेई वेठा हूंदा पंहिंजे ॿारनि खे पोलियो जो कतरा पीआरियो ऐं बचाव जा टुका लॻायो, हेपेटाइटिस जा टुका लॻायो, कोरोना खां बचाव जा टुका लॻायो, छो लॻायो बाबा आहे ई कोन। उहा इन करे लॻाइनि पियो जिस्म में इम्यूनिटी हुजे त जेॾीमहिल बि इहा वायरस अव्हांखे लॻे त उहा पंहिंजे पाण ख़तमु थिए। त माना हिकिड़ी शइ अव्हांजे ज़हन में आहे न त माना उहा चवनि पिया त इहा ताक़त अव्हांजे जिस्म में मौजूदु हुजे त अव्हांजी तकलीफ़ थिए त ख़तमु थिए। त इहा ई त शइ त असां अव्हांखे सम्झायूं पिया त होम्योपैथिक बि इन रास्ता इन तरीक़े सां ई पंहिंजो इलाजु करे पई त उहा ग़लति त असांजी होम्योपैथिक ग़लति। त इहा करे फ़र्क़ु न कंदा कयो, इनशाह इलाजु कयो, अलाह अव्हांखे ज़रूरु सेतियाबी ॾे। प्रोग्राम जो टाइम ख़तमु थी चुको आहे, ॿिए प्रोग्राम ताईं मूंखे ॾियो इजाज़त। को सवाल आहे, का शइ पुछणी आहे त अवां सुभाणे क्लिनिक ते अची सघो था। सुबुह 9 खां शाम 6 वॻे ताईं क्लिनिक खुलियल हूंदी। वधीक मालूमात लाइ 0327-99-84-700। अलाह निगेबान।
1: जी आसामिन, असां सां गॾु हुआ सकण जा मशहूरु मारूफ़ डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहिबु। हर सुठी गुफ़्तगु जीअं अॼु जी ही महफ़िल बि पंहिंजी पुॼाणी ते पहुती आहे। अॼु असांजे मौज़िज़ महिमान डॉक्टर साहिबु पंहिंजी क़ीमती इल्मु, तजुर्बे ऐं बसीरत सां केतिरनि अहम मौज़ूअनि ते रोशनी विधी, जंहिं लाइ असीं संदनि दिलि जी गहिराइयुनि सां शुक्रगुज़ार आहियूं। समिन, सिहत रुॻो बीमारी जो नालो या बचण जो नालो न आहे, पर हिकु बहितरु, ख़ुशहाल ऐं मुतवाज़न ज़िंदगी जी बुनियादु आहे। उमीद था कयूं त अॼु जी हिन गुफ़्तगु मां अव्हांखे अहिड़ी ॼाण मिली हूंदी जेका अव्हांजी ज़िंदगी में मुसबत तब्दीली आणण जो सबबु बणिजंदी। असांजा मौजूद सामिन, अव्हांजी मोहबतुनि ऐं अव्हांजे ॿुधण जो अंदाज़ ई असांजे हौसले जो सबबु आहे। अव्हां सभिनी जा बेहदि थोराइता आहियूं। मां नादिर अली मक्सी अव्हां खां मोकल वठां थो, ईंदड़ वरी ॿिए प्रोग्राम में कंहिं नए मौज़ू, कंहिं नए फ़िक्र सां गॾु अव्हांजी ख़िदमत में हाज़िर थींदासीं। तेसीं ताईं पंहिंजो, पंहिंजे सिहत जो मुसबत सोच खे पंहिंजो साथी बणायो ऐं ज़िंदगी खे मुस्कुराहटुनि सां सींगारियो। सामिन, प्रोग्राम सिहत जी ॻाल्हि जो होम्योपैथिक सां प्रोग्राम जो वक़्तु पहुचे थो पंहिंजी पुॼाणी ते। जॾहिं बि दुआ लाइ हथु खणो, पंहिंजे मेज़बान नादिर अली मक्सी खे पंहिंजी दुआनि में ज़रूरु यादि रखंदा। ऐं ज़िंदगी अगरि साथ ॾिनो त हूंदसि ॿिए प्रोग्राम में अव्हां सां गॾु। तेसीं ॾींदा इजाज़त, अलाह वाही, अलाह निगहबान। जेॾा पेर तेॾा खैरो खैर।

0: वफाकी हुकूमत जो नंढनि दुकानदारनि लाइ फिक्स टैक्स स्कीम आणण जो ऐलान नाणे वारे वज़ीर मोहम्मद औरंगज़ेब चयो आहे त टैक्स ॾींदड़ आसानी चाहे थो। स्कीम ज़रिए 30 खां 40 लख दुकानदारनि खे टैक्स जे दायरे में आंदो वेंदो। जेको तबिको टैक्स न ॾींदो हो हाणे ॾियण चाहे थो। मुमलकती वज़ीर बिलाल अज़र कयानी चयो त मुशावरत ऐं वापारी तनज़ीमनि जे मुतालबे ते टैक्स स्कीम आणे रहिया आहियूं। स्कीम सालियानी 20 करोड़ खां घटि सेल रखंदड़ दुकानदारनि ते लागू थींदी। IMF नए माली साल जी बजट में स्टेशनरी ते सेल्स टैक्स वारी रियायत खत्म करण जो मुतालबो करे छॾियो। तालीमी सामान वधीक महांगो थियण जो इम्कान। ज़रियनि जो चवणु आहे त हुकूमत IMF जी मुतालबे ते स्टेशनरी ते सेल्स टैक्स लॻाइण जो फ़ैसिलो कयो आहे। 1 जुलाई खां स्टेशनरी ते 18% टैक्स लॻण जो इम्कान आहे। वफ़ाकी हुकूमत नए माली साल जी बजट 10 जून ते पेश करण जो फ़ैसिलो कयो आहे। वफ़ाकी हुकूमत जो कराची शहर जे मुख़्तलिफ़ मनसूबनि लाइ फंड जारी करण जो फ़ैसिलो। कराची जे समूरनि गलियुनि ऐं पाणी जे मनसूबनि लाइ बि पैसा रखिया वेंदा। वफ़ाकी बजट जी दस्तावेज़नि मूजिबि कराची जे ग्रीन लाइन बस सर्विस लाइ 1.98 अरब रखण जी तजवीज़। ज़िले ओलह जी मनसूबनि लाइ 26 करोड़, नाज़िमाबाद ऐं लियाकताबाद जे मनसूबनि लाइ 37 करोड़ रखण जी औरंगी ऐं मलीर ज़िले जी मनसूबनि लाइ 5 करोड़ रखण वारी तजवीज़ बि बजट में शामिल। कराचीअ में जना मेडिकल कॉम्प्लेक्स एंड रिसर्च सेंटर जी क़याम लाइ बि 40 करोड़ रखण जी तजवीज़। नेशनल रिसर्चर एंड फिज़िबिलिटी केयर लाइ बि 39 करोड़ रुपया रखण जी तजवीज़ ॾिनी वई। कराचीअ में नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ नर्सिंग जी क़याम लाइ बि 5 करोड़ रुपया रखण जी तजवीज़। वज़ीर आज़म शाहबाज़ शरीफ वापारी अदालतुनि जी क़याम लाइ क़ानून साज़ी जो फ़ैसिलो करे वरितो। मसवदे जी तयारी अटॉर्नी जनरल नाणे वारो मुल्कती वज़ीर ऐं क़ानूनी माहिर कमेटीअ में शामिल। कमेटी वापारी अदालत जी क़याम बाबति क़ानूनी मसवदो तयारु कंदी। कमेटी वापारी तकरारुनि जी निज़ाम जो जाइज़ो वठी सिफ़ारिशूं पेश कंदी। क़ानूनी नुक़्तनि ते तफ़सीली रिपोर्ट बि तयारु कई वेंदी।
1: शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इस मुल्क को एटम बम का तोहफा दिया।
2: तो शहीद मोहतरमा बनर्जी भुट्टो ने मिसाइल टेक्नोलॉजी दिलवाई।
1: इसको बर्दाश्त करना है और इंशाअल्लाह ताला हम मिलके आपका वोट का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे।
2: आपकी दरमियान में खड़ा होके ये अपील करता हूँ, ये जिद्दोजहद गिलगित के अवाम का जिद्दोजहद है। इसका फायदा भी गिलगित बल्तिस्तान के अवाम का, गिलगित के अवाम का होना है। 18वीं तरमीम का तहफ्फुज हम गिलगित बल्तिस्तान को इंशाअल्लाह ताला मिलके दिलवाएंगे। हमारा मुआशी पॉलिसी ना सिर्फ हके रोजगार दिलवाएगा, मुआशी इंसाफ दिलवाएगा। अब साथ
3: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
4: हाने हैरत अंगेज जदीद मशीन जरिए पंहिंजो चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक तरीक़े इलाज सां शिफ़ा हासिल करियो। जी हाँ, हाणे अवां जे पंहिंजे शहर सकरण में हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक ते मशहूरु मारूफ़ ख़ानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब DHMS सिंध RHMP पाकिस्तान जनरल फिज़िशियन माहिर अमराज मैदो ऐं जिगर जी गर्माइश गुर्दे जी पथरी ऐं सोज पुराणी खंघ ज़ुकाम दिल जी तकलीफ़ अधु मथे जो सूर अखियुनि जी ख़ारिश जोड़नि जो सूर बुखार ॿारनि जो देर सां हलण फालिज शुगर दिमाग़ी कमज़ोरी ख़ारिश नासूर खूनी ऐं बादी बवासीर इन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वेंदो आहे। होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब टाइम रोज़ानो सुबुह 9 वॻे खां शाम 6 वॻे ताईं बरोज जुमो 12 वॻे ताईं। एड्रेस हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक स्टेशन रोड सकर। वधीक मशवरे ऐं राब्ते जे लाइ 0327-99-84-703।
5: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: डायग्नोस्टिक सेंटर नज़द घंटी फाटक लाड़काणो। मुआइने जो टाइम शाम जो 3 बजे का रात जो।
1: सिंध का है ये मुनफरिद एजाज, तहजीब की रखवाली और मेहमान नवाज।
2: ढाडो सुठो
1: जीए FM 88 नेटवर्क
3: सिंध की आवाज़।

0: MBBS, FCPS, DOMS, हदारती गोल्ड मेडलिस्ट अखिन जे पर्दे ऐं बीमारियुनि जो माहिर फेको सर्जन हिते अखिन जे बीमारियुनि रेटिना यानी अखिन जो पर्दो कारो पाणी मोतियो पाणी उन खां अलावा शुगर ऐं ब्लड प्रेशर जे करे पैदा थींदड़ अखिन जे पर्दे जे बीमारियुनि जो इलाज ऐं ऑपरेशन जदीद मशीनुनि सां कयो वञे थो। जिना अस्पताल कराची, लियाकत मेडिकल कॉलेज हैदराबाद, खैरपुर मेडिकल कॉलेज, गुलाम अहमद मेडिकल कॉलेज सखर ऐं शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी लाड़काणे जो अॻूणो चेयरमैन प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद जमाल सिद्दीकी, अखिन जे पर्दे ऐं बीमारियुनि जो माहिर फेको सर्जन, इंडस हॉस्पिटल लग लेडीज़ जेल रोड लाड़काणो। टाइम रोज़ानो शाम जो 4 बजे खां राति जो 9 बजे ताईं, अंगारो, खमीस ऐं आचर ते सुबुह जो 10 बजे खां मंझंदि जो 2 बजे ताईं। यादि रखंदा, जुमे जे ॾींहुं क्लिनिक बंदि रहंदी। राब्ते लाइ मोबाइल नंबर 03003410560 ऐं 03173276619।
1: आप सुन रहे हैं GFM ETH नेटवर्क, सिंध की आवाज, सिंध की आवाज।
2: आयो न सगदी मां तवां जो पेंजे हो सार जो विलास घुमरो। कहिड़ा हाल आहिनि, कीअं आहियो मुंहिंजा प्यारा लिसनर्स? उमेद त तव्हां ठीकु हूंदो ऐं ख़ुशि हूंदो ऐं जिते बि हूंदो आबाद हूंदो ऐं असां सभिनि जूं तव्हां ॿाहिरनि सां भेनरुनि सां दुआ आहे त अलाह ताला कंदो जेको बि तव्हांजो हर पल आहे उहो ख़ुशियुनि सां गुज़रंदो ऐं कॾहिं बि तव्हां को ॾुखियो न ॾिसंदो ऐं सुबुह जेको तव्हांजो ॾींहुं गुज़रनि तमामु घणो बहितरीन ऐं ख़ुशहाल वारी ज़िंदगी वारो गुज़रंदो। आमीन।

सोखे पल पल मुझा इशारा हुआ, तेरे वार मुझा बकारा हुआ। हवा उन बहारों हुआ मस्त वणकर, का खबर कोन हुई बस इन नजारा हुआ। जवान इन असां जो नजरों माणन जो, पेंजा बंजी मारिया वया प्यारा हुआ। सजन जोखे पानन के सभी थे चायो, मगर नाज तुंजा न्यारा हुआ। लिसनर्स, प्रोग्राम दिल जी गाल में शामिल थे जो तमाम घणो आसान सवलो तरीको है, मां तमाके बुधाईंदी ला थी, नोट कयो। पहले मोबाइल खणो राइट में साइड ऑप्शन में एमआर लो को स्पेस दियो, केम सम फरमाइश पे के जना डेडिकेट कियो, पहले गोट या पहले शहर नाले लिखी 881 ते सेंड कयो, यानी 8881 ते मोकलियो। खूबसूरत शमन मिला रही मीराली आवाज में तमाम घणो बेहतरीन सॉन्ग आए, रात चंड लहे न पियो, वार खोले सुतो है। अच्छा सॉन्ग के गजी इंजॉय करना था।

तोसां नी लॻो मुंहिंजो निंड फिटी आला निंड फिटी रातिन जागी कटियां माण लिखियो चरियो आ दीवानो ओ दर्द छा ॼाण ही ज़मानो तूं आ भेरो वेगो मुंहिंजी निंड फिटी रातियूं जागी कटियां मस्त करे पोइ मुंहुं ठही मटायो ओ दर्द मूं ते तो आ रुलायो कयमि कारो वॻो मुंहिंजी निंड फिटी रातियूं जागे कटियां जोखियो पांदन बेवस फाथो दर्द जूं जीअं वटि नाहे को आथो टुटो सिक जो सॻो मुंहिंजी निंड फिटी रातियूं जागे कटियां तोसां नीअं लॻो मुंहिंजी निंड फिटी अला निंड फिटी।

일단 103일 은퇴를 하기 전 도망가러 빠져나요. प्रोग्राम दिल जी गाल में शामिल थे तमाम घो आसा ही सलो तारीख है तक बुधाई दिल थी नोट कर मोबाइल खड़ो राइट मैसेज ऑप्शन वो एम आर को स्पेस दियो केम सम फरमाइश कर के ना डेडिकेट कर घोट या नाल लिखित प्लेट बन सेंड कर यानी 8881 से मोकलो लिसनर सालों तंहर खूबसूरत मास्टर मंडूर के आवाज़ में तमाम घो प्यारों खूबसूरत सॉन्ग है जो गजी इंजॉय कहूँ था।

वेलकम बैक सामिन उन तमाम तमाम खणो सॉन्ग पसंद आयो होंदो असा तोले गेर आई वनी प्यार दे पेंजन के वाकई हकीकत आ आई कड़ी गाल मके समझ नथी चे थे जिया उ इते आई आ इंतिया त जेके मुजा प्यारा लिसनर सन ओ सबई वाला मुखा वधिक फटिया पयो मतलब मुखा वधिक दर्दीला सॉन्ग तमाम घणा बुधन था जेके भी लिसनर्स मके मिलन जिनन भी मके फरमाइश कई आज री थे मतलब आज माशाल्लाह मके चौथो महीनो आ त जिया उ इते ज्वाइनिंग कया था मके जेके मुजा प्यारा लिसनर सबन मतलब इनी सॉन्ग री फरमाइश कई आ मतलब तमाम घणा टफ टफ दुख वाला गाना बाबा मुखा वधिक त सफा सड्या पयो छ ऐं ख़ासि करे राति जो अहिड़ा गमगीन गाना न ॿुधाईंदा कयो राति जो पोइ महबूब निंड में अचे त पोइ ख़्वाब में त पोइ बाबा रोई ॾियूं त पोइ सिक लॻे थी न इंसान खे त

0: जारी करण जो फैसलो कराची जे समूरन घिटिन ऐं पाणी जे मनसूबनि लाइ बि पैसा रखिया वेंदा। वफ़ाक़ी बजट जी दस्तावेज़नि मूजिबि कराची जे ग्रीन लाइन बस सर्विस लाइ 1,98 करोड़ रखण जी तजवीज़, ज़िले ओलह जी मनसूबनि लाइ 26 करोड़, नाज़िमाबाद ऐं लियाकताबाद जी मनसूबनि लाइ 37 करोड़ रखण जी तजवीज़, लांडी ज़मान टाउन ऐं कोरंगी टाउन जी मनसूबनि लाइ बि 35 करोड़ रखिया वेंदा। कोरंगी ऐं मलीर ज़िले जी मनसूबनि लाइ 5 करोड़ रखण वारी तजवीज़ बि बजट। कराचीअ में जना मेडिकल कॉम्प्लेक्स एंड रिसर्च सेंटर जी क़याम लाइ बि 40 करोड़ रखण जी तजवीज़, नेशनल रिसर्चर एंड फिजिबिलिटी केयर लाइ बि 39 करोड़ रुपया रखण जी तजवीज़ ॾिनी वई। कराचीअ में नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ नर्सिंग जी क़याम लाइ बि 5 करोड़ रुपया रखण जी तजवीज़। वज़ीर आज़म शाहबाज़ शरीफ़ वापारी अदालतुनि जी क़याम लाइ क़ानून साज़ी जो फ़ैसिलो करे वरितो। मसवदे जी तयारी लाइ कमेटी क़ाइम। कानून वारे वज़ीर सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ कमेटी जो कन्वेनर मुकरर।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: हाणे हैरत अंगेज़ जदीद मशीन